नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र

0: को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है वंदन।

आज का चिंतन। संत कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। अर्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें किताबें पढ़कर दुनिया में कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। वास्तव में ज्ञानी वही है जो प्रेम, सौहार्द, मानवता, परोपकार की भाषा पढ़ सके। अप्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 305। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक के। भूले बिसरे गीत 7 से हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 से 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। आज का सुबह का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा 9:30 पर पार्श्व गायिका डॉक्टर भूपेन हजारिका। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का है, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। सुबह 10 पिटारा में सेहतनामा पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की है। बारह बजकर पांच मिनट पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर, 2 त्रिवेणी। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे, 3 सखी सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम है। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, आपको फिर से बता दें श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा सुनिएगा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस, 8 हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज सुनेगा झलकी नया तजुर्बा, लेखन हरीश दीक्षित का, निर्देशन अनुराधा शर्मा का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर सुने पार्श्व गायिका आशा भोसले पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। 10 छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 305।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। गाना आज आपने सुना भाग 305।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, किराना घराने में प्रस्तुतीकरण को लेकर जो बातें बताई गई हैं, उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है?
2: बहुत सारी विशेषता है, अभी तक हमने चर्चा तो की है।
1: जी जी जी।
2: विलंबित लय, स्वर प्रधानता, मिंड गायकी,
1: सूक्ष्म
2: लगाव, अभी जो महत्वपूर्ण जो है, जो सब घराने में रहते लेकिन हमारे घर में भी, घराने में भी है, वो राग का स्वरूप, उसका व्याकरण, उसकी शुद्धता, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए भी हम जो राग चुनते हैं वो थाट वाले राग चुनते हैं ज्यादातर। और राग के मूल स्वरूप का संरक्षण तो हमें करना है। ज्यादातर थाट प्रधान राग अथवा संपूर्ण राग लेने की जो प्रथा है वो हमारे घराने में है।
1: अच्छा।
2: प्रत्येक राग को उसके मूल स्वरूप और पारंपरिक पहचान के साथ प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया जाता है।
1: जी, जी।
2: राग के स्वरों पर, चलन पर, भाव पर अनावश्यक जो परिवर्तन हम नहीं करते।
1: अच्छा।
2: यानी कभी कभी क्या होता है, एक एक स्वर राग में अगर हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा कम लगाया, अभी देखो तोड़ी और मुल्तानी दोनों का स्वर एक ही है।
1: अच्छा।
2: लेकिन उसका जो मध्यम है मुल्तानी का, पंचम है, पंचम पर लगाव है, ठहराव है, इसके ऊपर ही इसको हम अलग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये जो है, ये व्याकरण जो है पूरा पालन करना इस घराने की गायकी में, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, विशिष्ट पकड़ तथा स्वर प्रयोग,
1: जी जी जी,
2: इन सब चीजों को नियमों के अत्यंत सावधानी से हमें पालन करना पड़ता है।
1: अच्छा।
2: और यही राग की शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखता है। शास्त्रीय शुद्धता को भी रखना, उसका भाव भी रखना।
1: अच्छा।
2: ये सब बातें जो है उसका बहुत ही, इट इज लाइक अ मेडिटेशन, अध्यात्म ही है।
1: जी, जी, जी।
2: प्रत्येक स्वर का एक उचित स्थान होता है। हर स्वर को उसके निश्चित स्थान और उचित महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी, जी।
2: किसी भी स्वर का प्रयोग राग की प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब राग की जो पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट करना है।
1: जी, जी।
2: विलंबित आलाप, मिंड और सूक्ष्म स्वर लगाव के माध्यम से राग का स्वरूप धीरे धीरे विकसित किया जाता है, जिससे राग की पहचान हो जाती है और शुद्धता और भाव का संतुलन।
1: जी।
2: किराना घराना केवल तकनीकी शुद्धता पर ही नहीं बल्कि राग के भाव और रस की अभिव्यक्ति पर भी समान रूप से बल देता है।
1: जी, जी।
2: इसलिए गायकी शास्त्रीय होने के साथ साथ भावपूर्ण भी होती है।
1: वाह।
2: और भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का जो स्वभाव होता है उनका असर भी वहाँ पड़ता है। इसीलिए हमारी गुरुजी हमें हमेशा बोलती थी कि स्वभाव में जो ट्रांसपेरेंसी आप रखते, पारदर्शकता रखते, वही आपका गाना
1: आपके
2: है,
1: गायन में भी वो दिखती,
2: ये शुद्धता होनी है।
1: वाँ, वाँ।
2: और एक प्रामाणिक, ये
1: क्या बात,
2: गहन विकास का महत्व, यानी राग के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे अत्यंत महत्व और आवश्यक माना गया है।
1: सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी बात है।
2: और प्रचलित राग जो किराना घराने में हमेशा गाते हैं, यमन, तोड़ी, दरबारी कानरा, भैरव, मुल्तानी, पुरिया, ललत, बागेश्री, मियाँ के मल्हार, शुद्ध कल्याण, पुरिया धनश्री, ऐसे सारे राग हैं जो संपूर्ण राग है, जहाँ सब गाने के लिए अच्छा मिलता है, उसका व्याकरण का संभाल करने के लिए बहुत ही अभाव है, ऐसे राग हम चुनते हैं। इसलिए मुझे

0: है।
1: वाह वाह,
0: दया करो गिरिधर गोपाल। उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं।
1: वाह, आमिर खान का नाम आया तो कहती हूँ
0: जी,
1: ये जो चीज मैंने गाई हो वो हमारे गुरुजी पंडित प्रसाद सावकर के पास
0: जी,
1: कुछ
0: जी, जी,
1: साल में हाँ, सीखी हूँ, उन्होंने दी है। वो कहते थे जब भी तुम्हारा रियाज कम होता है तब ऐसी चीज गाने का, तो आवाज की फिरक
0: अच्छा
1: बढ़ती है।
0: ओहो,
1: खान साहब का कुछ राग ही ऐसे है जिसमें उनकी फिरक और उनका जो वजन ये समझ में आता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: ये खान साहब का, चलो सुनेंगे।
0: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग मुल्तानी पर आधारित जो फिल्मी गीत इस वक्त जहन में आ रहा है वो शबाब फिल्म का

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का

तुलसीदास फिल्म की रचना आपने सुनी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। जी एस नेपाली की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। आज संगीत जगत की महान कलाकार पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्मदिवस जन्मतिथि है। अपने जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पद्म विभूषण आशा भोसले को शत शत नमन।

0: वो दिन कहाँ गए मेरे सपनों से मीठी गीतों से प्यारे, वो दिन कहाँ गए। वचन फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज में। प्रेम धवन की रचना आपने सुनी, संगीत निर्देशन रविशंकर का था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

अमर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में शकील बदायनी के बोलते नौशाद की तर्ज थी। लीजिए अब सुनिए जागृति फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। कवि प्रदीप की ये रचना है, हेमंत कुमार की धुन।

चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर फूलों की छांव में। जागृति फिल्म का ये बहुत ही सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था कवि प्रदीप ने और गाया था आशा भोसले ने। अब आपको सुनवा रहे हैं प्रभु की माया फिल्म का ये गीत। आशा भोसले की आवाज़ है, दीपक ने इस गीत को लिखा है और रवि ने इस गीत की धुन बनाई है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले,
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

नवरात्रि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। जीएस नेपाली ने इस गीत को लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी। अब प्रस्तुत है बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, तलत महमूद की, शैलेंद्र शब्दकार हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: सज धज के।
1: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सविता सिंह का नमस्कार। आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आत्मलोक के रूप के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे आत्मलोक के रूप के।

0: ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। SH बिहारी की बोल थे ओपी नैयर की तर्स। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

आपको फिर से बता दें, वक्त फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें थी, शाही लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। ये गीत जो आप सुन रहे हैं इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं।

0: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। यादों की बारात फिल्म का ये गीत आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। और इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों

0: को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए एआई सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first.

0: Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
4: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, X पर @AIRNews हिंदी को फॉलो।

0: करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हथियारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29,00,000 से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की दुनिया से दूर हैं?

0: राजा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादुर।
0: बनके बा।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी, और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे, तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा ने इस गीत को लिखा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं
1: बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है।

संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था और तलाश फिल्म का गीत आपने अभी सुना। समारा फिल्म का ये गीत है, के लक्ष्मी मोहन की आवाजें हैं।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत की धुन बनाई थी। महान पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्मदिवस जयंती है। महान गायक, गीतकार, संगीतकार और असम की खूबसूरत सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें, सुनना न भूलिएगा आज की फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर सुनेगा, जो केंद्रित है महान गायक भूपेन हजारिका पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार।

0: उनका सफर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुन
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत, आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
1: जी।
2: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ड बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
1: जी,
2: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अब लेते हैं एक ब्रेक।

0: हिचकी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे, राजशेखर ने इसे लिखा था और जैस्लिन रॉयल का संगीत था। आज राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, हर साल 8 सितंबर को। सभी जानते हैं साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ना लिखना और जानना। पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और बहुत सारे कार्य करने योग्य बन जाता है। लेकिन सही अर्थों में जानना तब होता है जब हम ज्ञान और विवेक यानी सही गलत की हमें पहचान होती है। जो लोग साक्षर नहीं है उन्हें जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है और आजकल तो पढ़ने लिखने के साथ साथ संवाद करना, टेक्नोलॉजी और तमाम उपकरणों का ज्ञान भी साक्षरता में शामिल हो गया है। यानी सबका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितने की पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पढ़ना लिखना तो सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए जरूरी है, और जानने से तात्पर्य विवेक होना, ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना, उचित अनुचित की पहचान होना, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को साक्षर बनाना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, या उनकी पढ़ाई में कोई आर्थिक परेशानी आई या कोई और परेशानी आई। उन सबकी हमें मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का यह भी उद्देश्य है कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने और समझने का अवसर प्राप्त कराया जाए। महिलाओं और वंचित वर्गों को साक्षर बनाकर आत्मनिर्भर बनाना ये भी एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों की येन केन प्रकारेण मदद करें जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। और आज की जरूरत है मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और डिजिटल भुगतान, और ये सभी आज की जरूरत है। इन सब जैसी जरूरी चीजों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और इस दृष्टिकोण से ताकि उनमें हीन भावना ना आए। ऐसे भाव से हमें सबको बताना चाहिए और जिस भी प्रकार से मदद की जा सके करना चाहिए।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

रट्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था। साथियों, साक्षरता का अर्थ केवल ये नहीं कि अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें या पढ़ाई कर लें, किताबें पढ़ लें, उसे अपने जीवन में सही मायने में उतारना ही साक्षरता सही मायने में सिद्ध होता है।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्र

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी गोपी सुंदर और श्रीप्रदा की आवाजें थी, और अमिताभ भट्टाचार्य के ये बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। अपनी जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पार्श्व गायिका आशा भोसले का आज जन्मदिन है। सुरों की मल्लिका, जिन्होंने हर भाव को संगीत में व्यक्त किया, एक ऐसी आवाज जिसने

7 दशकों तक संगीत को संवारा। उनके जन्म दिवस पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आशा भोसले के बारे में विस्तार से जानकारी सुनेगा रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। सुनना न भूलिएगा। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं बेगम जान फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है कौसर, मुनीर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। जब उन्होंने ये गीत गाया तो उस समय उनकी उम्र यानी कि उस उम्र में ये गाना बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस गाने में जिस संजीदगी और सुरीली आवाज़ के साथ इसे बड़ी ही गहरी और भावपूर्ण से इस गीत को गाया है, इस गीत ने सभी दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये गीत दर्द और अकेलेपन को बयां करता है और ये बहुत ही सुंदर

वाला गीत अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे फनकार की बातें जिनकी आवाज, जिनका स्वर सुनकर समय जैसे थम जाता है और हम कह उठ

एक ऐसी आवाज जो मन की वादियों को एक अजीब सा सुकून देती है, एक ऐसी आवाज जो सारी दुनिया की आवाज है, जो अपने लोक रंग की वजह से दुनिया भर में बहुत अनूठी मानी।

आज के फनकार कार्यक्रम आज डॉक्टर भूपेन हजारिका पर केंद्रित है। डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था सदिया असम में। उनके पिता नीलकांत हजारिका और माता शांति प्रिय हजारिका थीं। बचपन से ही उनकी मां ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। मां की लोरियों के साथ धीरे धीरे वो असम के लोक संगीत से परिचित हुए। सन 1929 में उनके पिता गुवाहाटी में आकर रहने लगे और सन 1932 में डॉक्टर भूपेन हजारिका का परिवार धुबरी आ गया। इसके बाद ये सभी लोग तेजपुर आ गए। तेजपुर में ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा ने भूपेन हजारिका की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। सन 1936 में भूपेन हजारिका ने अपना पहला गाना कोलकाता में रिकॉर्ड किया।

0: की सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है।
1: इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में और उसके बाद धुबरी के सरकारी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1942 में उन्होंने कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, बाद में बीए और एमए किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। थोड़े दिनों तक डॉक्टर भूपेन हजारिका गुवाहाटी के आकाशवाणी केंद्र में काम करते रहे। जल्दी ही उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप मिल गई और वो पहुंच गए न्यूयॉर्क सन 1949 में। सन 1952 में डॉक्टर हजारिका ने अपनी पीएचडी पूरी की। अमेरिका के दिनों में भूपेन हजारिका पर वहां की संगीत का खास प्रभाव पड़ा। ये वो दिन थे जब अश्वेत संगीतकार पॉल रॉबसन अमेरिकी श्रमिक जनता की आवाज बन चुके थे। पॉल रॉबसन ने मिसिसिपी नदी और उसके आसपास काम कर रहे मजदूरों की व्यथा को जोड़कर अपना एक कालजयी गीत बनाया, ओल्ड मैन रिवर। ये गाना मिसिसिपी नदी और मजदूरों की महागाथा बन गया।

डॉक्टर भूपेन हजारिका को फौरन अपनी नदी गंगा याद आई, अपना देश याद आया और बहुत ही भावनात्मक पलों में उन्होंने एक गाना लिखा, गंगा बहती हो क्यों। मूल रूप से इस गाने की रचना बांग्ला में की गई थी, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे हिंदी में तैयार किया और ये रचना आज जनता के दिलों का स्वर है।

डॉक्टर भूपेन हजारिका दरअसल आम जनता की आवाज हैं, खेतों में काम करते मजदूरों की आवाज हैं, चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़कर अपनी पीठ पर लटकी टोकरी में जमा करती स्त्रियों की आवाज हैं। वो इस देश की नदियों, इस देश के पहाड़ों, इस देश की हवा, इस देश की संस्कृति, इस देश के नृत्य की आवाज हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका हमारी आवाज है।

सन 1970 में डॉक्टर भूपेन हजारिका की मुलाकात कल्पना लाजमी से हुई। उन दिनों में कल्पना लाजमी एक पल नामक फिल्म बना रही थी। इस फिल्म के संगीत का जिम्मा डॉक्टर हजारिका को दिया गया और इस तरह तैयार हुए कुछ अद्भुत गाने।

0: डॉक्टर हजारिका ने कई फिल्मों में संगीत दिया। सन 1973 में फिल्म आरोप में उन्होंने माया गोविंद के इस गाने को स्वरबद्ध किया था।
1: नहीं, नहीं।

0: चोला चोला भूख मिटाए दे प्यास हटाए दे खाली है पेट का झोला वो झोला झोला वो झोला है याना याना याना।
1: सन 1997 अमोल पालेकर की फिल्म दरमिया। डॉक्टर हजारिका के फिल्मी गीत जितने लोकप्रिय हुए उससे भी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं असम और बंगाल के इलाके में उनके गैर फिल्मी गीत और उनके जनगीत।

डॉक्टर हजारिका को सन 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1977 में पद्मश्री मिला। सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1992 में वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। संगीत नाटक अकादमी ने साल 2008 में उन्हें अपनी फेलोशिप से नवाजा था। डॉक्टर हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा। वे शारीरिक रूप से भले ही इस संसार से कूच कर गए 5 नवंबर 2011 को, लेकिन उनका स्वर, उनकी लेखनी हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे ज़रूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है, ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको ज़रूरी है, आपको आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको ज़रूरी है, और आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो ज़रूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषकता की खासतौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
2: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की किस मात्रा में ज़रूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
2: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपके थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से,
2: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है और हम आजकल ज्यादाकर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग चौली राजमा छोले इसमें से आ जाता है, अगर आप दूध लेते हो तो दूध पनीर इसमें से आ जाता है, और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी फिश चिकन इसमें से आपको मिल जाता है, और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज़्यादातर सब्जियों से भर जाता है।
1: जी जी
2: ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की ज़रूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है।
1: जी और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ
2: जी
1: पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने?
2: जी
1: हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
2: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: जोहारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
3: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा, ओके।
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज़्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना ज़रूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना ज़रूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, वो होना ज़रूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी होता है। मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना ज़रूरी है। ये वही वक्त है ज़िंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के ज़माने में था, आपके बुज़ुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान देखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना ज़रूरी है। जितना बचपन में खाना ज़रूरी है उतना बुज़ुर्गों के लिए भी खाना ज़रूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुज़ुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप बुज़ुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्या फल सब्जियाँ सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना ज़रूरी है। और उससे

0: ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं?
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
0: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना ज़रूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियाँ मिलती हैं, वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल, जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज़्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आपको ये फल ज़्यादा खाने ज़रूरी है। जैसे सब्जियाँ हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज़्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
1: पत्ती वाली
0: वो
1: सब्जी।
0: पत्ती वाली सब्जियाँ, मगर जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियाँ आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा
1: अच्छा
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में।
1: जी
0: नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीज़ें अलग अलग है,
1: जी जी
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं।
1: जी
0: नट्स वो चीज़ हैं जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए, जो आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राज़ील नट्स आ गए। अभी ब्राज़ील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राज़ील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पम्पकिन सीड्स, बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता
1: बढ़
0: है।
1: जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया। और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर
1: ओ
0: लेवल।
1: जी।
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी है, जो ज़रूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा
1: जी
0: करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है। जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो
1: जी
0: उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है। और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गांव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं।
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे
0: जी
1: कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग-अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सकें। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार। इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से
0: शुरू हो जाना
1: संभालना
0: चाहिए।
1: चाहिए। मतलब आपके सही विटामिन्स मिनरल्स आपका आहार क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं।
0: जी
1: कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है। देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी कैल्शियम आयरन फॉलिक एसिड ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग-अलग मात्रा में खाया जाता
0: जी
1: है, उसकी रेशोज भी अलग-अलग।

0: होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहां पे एक चौथाई धान है, एक चौथाई प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही, दूध, सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे। ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं,
1: जी
0: जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
1: जी ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस
0: जी
1: समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के
0: जी
1: लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो
0: बहुत
1: क्या
0: ज्यादा
1: स्पेशल कोई डाइट होती है?
0: जी। आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है।
1: जी
0: जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको विटामिन्स, मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला हैं और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना ज़रूरी है। आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी ज़रूरी है और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और माहवारी के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज़्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत ज़रूरी होता है और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लगते हैं,
1: जी
0: ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना ज़रूरी है, मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज़्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
1: जी
0: मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए,
1: जी
0: जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज़्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे
1: जी
0: परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने,
0: जी।
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई चक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

0: अलग-अलग बीमारियों के लिए, अलग-अलग अवस्था के लिए अलग-अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाते हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में?
1: ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं, उनको एसिडिटी ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है।
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पाचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना, वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी।
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते
0: जी
1: कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के
0: चाय
1: साथ,
0: से। हाँ,
1: और वो
0: बिल्कुल।
1: चाय के साथ होती है फिर 2 बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो
0: हाँ
1: चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है।
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा
1: दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो।
0: जी।
1: जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा,
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है, ज्यादातर मेलिन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती है
0: जी, ब्लोटिंग होने लगती
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है,
0: जी।
1: तो आप कि शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी, और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
0: इससे

0: जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की ज़रूरत होती है। आपको डाइटिशन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके खाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की, उसमें आपके खाने में ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज़ हो, ऐसे खाने, कम मात्रा में, कम तेल, कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो
0: जी
1: और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
1: बहुत ज्यादा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो, इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी
0: जी
1: ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
0: डिप्रेशन
1: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई
0: जी
1: बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है।
0: जी
1: जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
0: जी
1: मानसिक चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपके खाने में क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे
0: जी
1: दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल, सब्जी, जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
0: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं, और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
1: नहीं, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। जैसे
0: बिल्कुल
1: ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई, मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा,
0: जी
1: आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
0: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
0: ऐसा खाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और
1: चलो
0: चॉकलेट भी है।
1: बढ़िया।
0: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता है।
0: जी
1: अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना
0: जी
1: संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियाँ ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियाँ, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसकी वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको
0: बिल्कुल
1: उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है,
0: मुनगा
1: वो इतना आयरन
0: सहजन।
1: रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी है, हम हल्दी

0: वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं,
1: जी।
0: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है।
1: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
0: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए,
1: जी
0: हम
1: जी
0: यहाँ पे 200-300 ग्राम 4 लोगों के परिवार के लिए खाते हैं
1: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके
0: बस।
1: बस मसाला डाल के बन
0: हाँ, और
1: जाता है
0: उसमें
1: तैयार।
0: ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है। आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते,
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
1: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
0: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती
1: जी
0: है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी-कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई
1: जी
0: बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग मगर उनका
1: जी
0: फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी
0: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या BMI के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे अभी एस्केलेटर्स हैं, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है, बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं,
1: जी
0: बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी
1: जी
0: होता है।
1: जी
0: तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी एक गाना सुने,
0: जी,
1: कौन सा
0: आप ही बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना?

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती है, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज़ नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
0: ओहो
1: वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से।
0: जी,
1: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
0: ओहो
1: नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीज़ें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला ले लो,
0: अमरूद।
1: अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स

0: उसको भी करौंदा बोलते हैं और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
1: जी,
0: सकते हो।
1: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किस में होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
1: जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत
0: वो
1: है?
0: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा डाल
0: थाली
1: देते
0: में
1: हैं।
0: ज़्यादा डालते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की ज़रूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की ज़रूरत है।
1: जी,
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: सब्जी में
0: आराम
1: भी,
0: से।
1: दाल में भी, बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं।
1: जी बिल्कुल, अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली, हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

0: अमर अकबर एंथनी, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ये पेशकश आपने अभी सुनी। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।

0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हरिहरन की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम रंग तरंग की ये अगली पेशकश।

0: तन्हा दिल इस एल्बम से गीत अभी आपने सुना, शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत और म्यूजिक राम संपत का।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तलत अजीज की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूल।

0: लिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: धड़कन, ये था एल्बम का नाम। पिनाज मसानी की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। मुश्ताक अहमद ख्याल ने इसे लिखा।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जान एल्बम से, फैज़ अनवर ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियाँ, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना

0: गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
3: लेकिन डाइन कौन देगा?
4: जी, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
5: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
4: 1, 2, 3 सब छुप गए ना? 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
2: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: मोहित बाबा!
7: अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
2: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
4: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
2: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
4: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
6: धप्पा!
4: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
2: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
4: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
8: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
4: मारिया
6: धप्पा!
8: अरे नहीं।
2: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
9: दादी दादी दादी, हिला मत हिला मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।

0: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है। अभी जाके देखता हूँ। और ये गया ये
1: सिमरन धप्पा, मैं पकड़ लिया।
0: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
2: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।
0: चादर के पीछे यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
2: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
2: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
0: धप्पा! ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
2: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल? तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
8: नमस्कार।
6: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आप

0: आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
1: जी जी
0: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
2: जी,
1: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
2: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
1: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
2: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
3: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
1: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
3: अच्छा।
1: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
0: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे।
3: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
0: अच्छा।
3: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
1: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
3: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
1: जी,
3: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
1: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
3: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
0: जी।
3: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
1: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
3: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
1: जी।
0: नीलम
1: जी,
0: तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
4: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
3: अच्छा, एक बात बताओ
4: जी,
3: सरिता व्हीलचेयर का प्रयोग कब से करती है?
4: इसकी माँ ने बताया था कि व्हीलचेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। चार साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
3: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
2: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
3: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है, और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
4: जी,
3: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
4: अच्छा,
3: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
4: ऐसा विकार होता क्यों है?
3: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
4: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
3: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
2: जी मैडम।
3: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे।
4: जी।
3: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
4: जी।
3: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
4: जी ठीक है।
0: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
4: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा है।
5: नमस्ते।
0: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेणु जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
3: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
5: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
3: रेणु जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
3: अच्छा।
1: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी, और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
1: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
3: अच्छा।
1: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
1: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
4: जी,
1: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
3: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
4: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
5: हाँ, संभव तो आता है, पर लिख नहीं सकती।
1: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
3: अच्छा।
1: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसे लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
4: रेणु जी, इसको ये समस्या कब से है,
1: ये

0: बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
0: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
2: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
3: जी, आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
2: जी,
3: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
2: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगी?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
3: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एक्सिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
7: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
8: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
10: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम।

यादों की बारात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन।

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा एआर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बाजीगर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में। रानी मलिक ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: दोस्ताना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से मिलती जुलती है और कितनी मिलती है। और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत हम इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं पहले से ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इबारत नहीं पढ़ी है। इबारत कुछ इस प्रकार थी। शाम की हल्की हवा में उसकी चुनरिया सरक रही थी। वो रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रही थी और वो दूर से उसे चुपचाप देख रहा था। एक दिन उनकी नजरें मिली, वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। बस वहीं से एक खामोश रिश्ता शुरू हो गया। उसके चेहरे में वो जादू था कि उसे देखते ही दिल बेखुद हो जाता। उसकी आंखों में उसने सपने भी सजा लिए थे। एक दिन बारिश में उसने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींच ली। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी तस्वीर इतनी क्यों खींचते हो? वो बोला, तुमसे मिलकर न जाने क्यों तुम्हें तस्वीर में कैद करने का मन करता है। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, ऐसा कभी हुआ नहीं। वो मुस्कुराया, ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद अब कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुमसे पहले किसी ने मेरे दिल को इस तरह छुआ ही नहीं। जीते तो हैं सभी, मगर जिंदगी वही है जो किसी के साथ जीने का ख्वाब दे जाए। और उस शाम बेखुदी में उठे कदम एक ही राह पर आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ, तो इबारत हमने पढ़ दी है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और आप अपने संदेश हमें भेजिए, साथ ही गीतों की लिस्ट भी भेजिए और हमारी बातें भी होती रहेंगी। फिलहाल शुरुआत इस गीत के साथ।

सिलसिला फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाज़ों में, और शिव हरी का संगीत था। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं जो पढ़ने जा रही हूं, और हाँ सवाल जवाब ज़रूर होंगे जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन पहले इबारत के बारे में जो आपने अच्छे शब्द बहुत ही सुंदर संदेश भेजे हैं वो पढ़ देते हैं। इबारत के बारे में आप कहते हैं कि एक ऐसी इबारत है, ऐसा खामोश इश्क की कहानी है जहां नजरों की मुलाकात, हल्की मुस्कान और अनकहे एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाते हैं। एक नज़र से शुरू हुई कहानी दिल में सपने जगा देती है, कभी तस्वीर बहाना बनती है तो कभी बारिश और शाम का मौसम मोहब्बत को और गहरा कर देता है। साथ ही इन श्रोताओं ने बहुत से गीत गेस कर लिए हैं, लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से गीत पूरे होते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुगम सुखांत प्रेम कथा, इस तरह से इबारत लग रही है हमें, और यहाँ प्रिया और प्रियतम सहजता से एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी रंग लाती है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ये इबारत में दो प्रेमियों के बीच पनपते प्यार की सुंदर दास्तां है। आपस में नजरें टकराना, बातें करना, तस्वीर खींचना, ये एहसास, यही तो जिंदगी है, और साथ में एक साथ आगे बढ़ना। और साथ ही इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, देखते हैं लिस्ट के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सिंदूरी, मखमली, शीतल, मनोरम, उस नीरव शाम की बेला में दो अनजान दिलों के बीच की एक चुंबकीय आकर्षण इस इबारत में नजर आता है। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता है जिन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया है कि शाम का समय था और शाम की हल्की हवा चल रही थी। ये बात उस समय की है जब उनकी शादी के कुछ दिन बीते थे और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ थे, और साथ ही साथ वो अजमेर से हैं लेकिन मुंबई घूमने के लिए आए थे, और मोटरबोट का सफ़र, समुद्र की लहरें, हल्की हवा, ये सब चीज़ें इबारत पढ़ते हुए उन्हें याद आ रही है। और उन्होंने इसी तरह से कैमरा निकाला और एक शानदार तस्वीर खींच ली थी जिनसे उनकी धर्मपत्नी शर्मा गई, और वो तस्वीर बहुत प्यारी है, बहुत ही यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, आपके इसी तरह के जो अनुभव है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता है मगर गुजरे जमाने के अक्स को दिखा नहीं सकता। आईना सिर्फ आज में जीता है जबकि तस्वीरें बीते लम्हों को कैद करना जानती है, और जब भी ये पन्ने पलटते हैं तो यादें खुल जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत नूरी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जहाँ निसार अख्तर ने इसे लिखा और खयाम का संगीत। आपके मैसेजेस हम तक पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम में जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया था सिलसिला फिल्म से, उस गीत के लिए काफ़ी सराहना आई है और ये भी कहा गया है, हमारी श्रोता लिखती हैं कि काफ़ी दिनों के बाद ये गीत उन्होंने सुना है और लिखती हैं कि ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सुरीला सुरीला सफ़र में ये आता तो दोपहर में है, लेकिन इबारत की इबादत से पता चलता है कि इबारत भरी दोपहर में शाम की बातें हो रही है, नज़रें मिलती हैं, थोड़ी बहुत झिझक के साथ फोटोग्राफी भी की जाती है और बेखुदी जैसे पथों पर इबारत बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं गीत आपके लिस्ट से मिलते हैं या नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत तो आप जो भी सुनवाना चाहें सुनवा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अब इबारत के शब्दों में वो नहीं फंसेंगी, ये भी अच्छी बात है। जो जहाँ है बस उसे इंजॉय किया जाए, उसमें आनंद ढूंढ लिया जाए, ये इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के बारे में कि यहाँ इस गीत में लोक संगीत और पारंपरिक संस्कारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश, शादियों या उत्सवों के उल्लास को बताता है। एक नववधु या प्रेमिका के मन की लज्जा व प्रेम का अनूठा चित्रण भी मिलता है इस गीत को सुनते हुए। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से आपने ये गीत सुना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, इबारत को लिखते हुए और पढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक सुकून ज़रूर महसूस होता है, तो इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में थोड़ा ठहरना भी ज़रूरी है और उस ठहराव के लिए ताकि हम फिर से अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ चलें पूरे जोश के साथ, तो ये ठहराव बहुत ज़रूरी होता है, ये पड़ाव बहुत ज़रूरी होता है शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए कि आपने अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेक जिसे कहते हैं, या ये ठहराव जिसे कहते हैं, या पड़ाव जिसे कहते हैं, या अपने काम से या जिम्मेदारियों से कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होले से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो, जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है, और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं, और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतज़ार है आपके उन संदेशों का। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, हीरा पन्ना फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी श्रोता कहती हैं कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूँ अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये जरूर लिखें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ, इस तरह के लिरिक्स जो है उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं, फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, ना शब्द चाहिए ना कोई इकरार, बस एक नज़र काफ़ी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है। प्रेम का चरम बिंदु वो है जहां दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुराने एल्बम्स से भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुँच जाते हैं। तो आज जहाँ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज़, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस ज़माने में जहां एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं कि आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है, किस तरह से संभाल के रखी है, क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठ कर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं, क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फोन की तस्वीरों में, लिखिए मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग, जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे, वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे कुछ होता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबां खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुँचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आँखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं? वक्त मिलता है वहाँ जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फ़र्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहाँ। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जब पहुँच जाएँ, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को संजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त ज़रूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत ज़रूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मज़ा आता, और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देखकर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसा उस पल का इंतज़ार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आँख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को, और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और श्रोता लिखते हैं कि आधे घंटे का सफ़र निकल चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र निकल चुका है, और घबराहट हो रही है कि सुरीला सफ़र में आज क्या हो रहा होगा, लेकिन अभी भी बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें।

आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फ़ोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

साथियों, ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। ये गीत आप सागर फिल्म से सुन रहे थे इस वक्त किशोर कुमार की आवाज़ में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न करते हैं। आज आपने ये सफ़र तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की

0: राजा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बहादुर
0: बनने के बाद।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
7: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
7: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
7: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
6: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
8: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
9: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
6: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
10: सारी स्थिति को देख देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
11: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
12: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
11: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
13: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर News on AIR Official को सब्सक्राइब करें।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस टी बर्मन का संगीत।

कसम से कहते तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
1: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी।

0: का। तो
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो, उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
1: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा, उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं।
0: तो अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है। और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए, तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं, और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े तो वो खबर सबसे पहले देखते थे, एयू क्लोज्ड, याद होगा है ना।
1: आपने बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो जिस समय दौरान दौर में हम लोग थे तो उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे, है ना।
0: तो एक मिनट इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे। अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया, प्रतिदिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर कि जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं, ऐसे में लगता था अरे बाप रे क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी और घर से बहुत दूर थी, तो पन्ना पलटते थे, एयू क्लोज्ड जब आता था आहा आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठना है। तो ऐसी कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान तो जरूर लिखिए, बहुत संक्षेप में लिखिए हमारे श्रोता, है ना।
1: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना, यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी किताबों से अखबारों से सब जगहों से लेना पसंद करते हैं।
0: अच्छा जरा बताइए, शिक्षा क्यों जरूरी है
1: भाई? अगर शिक्षा, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ी क्या पाएंगे, कुछ भी हमें सब किताबें शून्य नजर आएंगी।
0: और किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे बढ़ेंगी?
1: पहले तो किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है, और साथ में आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है? खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा होता है घरों में, वो भी बताएं।
1: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी

0: ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है
1: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है, और साथ में
0: जी
1: आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है,
0: जी
1: खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा
0: बिल्कुल,
1: होता है घरों में, वो भी बताएं।
0: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी

0: देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चे को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीज़ें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है। और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही
0: जी
1: शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन
0: जी
1: पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी आचार व्यवहार, बात
0: जी
1: करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं माता
0: बिल्कुल
1: पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहाँ से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे, और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज़ पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है। और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है। और इसके साथ साथ ममता जी, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल। और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था
0: जी
1: कि ठीक है, इनका इन्हें क्या होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा कर, एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहाँ का काम काज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है,
0: बिल्कुल
1: महिलाओं को भी लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए।
0: बिल्कुल
1: और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे
0: जी
1: बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है
0: दुनिया होती है
1: उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं।
0: जी
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
0: बिल्कुल, आपने
1: तो
0: बहुत सही
1: अगर
0: बात
1: वो
0: की
1: शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं और बेटियों को इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है। उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के जमाने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है, अपने आप को लाचार समझने लगता है, संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इस कारण शिक्षा जरूरी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि बाघ जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है, तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार, क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इनका जन्म हुआ था पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहां से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आई, वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी, एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेट्रिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात

0: डेटा कंपनी नहीं बनाया बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि बाग की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्तां भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है। और उन्होंने खास पहचान बनाई।
0: जी, और हम लोग सुनते हैं
1: एक
0: गीत।
1: गाना

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में
0: हाँ
1: उन्होंने लिखा है ना
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं,
1: जी।
0: अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी हैं जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती हैं, लिखती भी रहती हैं कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे
1: शब्दों को
0: बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया
1: जी।
0: कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था,
1: बिल्कुल
0: ये सारी मैगजीन चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती थी।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे,
1: हाँ
0: कि देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, हाँ। अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे। और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था। और देश दुनिया की जो होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है इससे इनके बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या कोई
1: कार्टून
0: और बात
1: का भी रहता
0: हाँ, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से

0: को हम उठा उठा कर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकले लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: देखिए शिक्षा का यही फायदा हुआ ना कि कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए।
0: साथ में पढ़ने का शौक, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है,
1: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
1: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उसको
0: वर्क
1: भी
0: पहली होती
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ वो भी और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
0: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है, पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए, तो बच्चों के पास उनकी उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए,
0: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है। और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत ज़रूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में
0: जी
1: आने वाली पीढ़ी में, तो ज़रूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब
0: बिल्कुल
1: उनमें रुचि पैदा होगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्मपत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज़्यादा आदत है। मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज़ मुझे मतलब लगती, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ लें सबसे पहले। तो
1: और पहले ये
0: जी
1: संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नज़र डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा, और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ लें। वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
0: मैं कहने वाली थी, और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा
1: और
0: चुका
1: पुराने
0: है।
1: अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूँ और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूँ, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट न जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से लिए स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करती थी।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
0: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बादी में टाइम मिलता है, महिला जी ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार पढ़ने
1: हमारे एक
0: की।
1: श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं, जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे, तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे। उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज़, और भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट
0: जी
1: पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह
0: बिल्कुल
1: देखती
0: सही
1: हूँ।
0: बात इन्होंने
1: राशिफल
0: लिखी
1: भी
0: है,
1: हम देखा करते थे
0: बिल्कुल वो
1: और
0: तो
1: रोजाना वाला राशिफल
0: रोजाना
1: कि
0: वाला।
1: आज क्या होने वाला है।
0: जी,
1: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ
0: शुभ होगा। और साथ
1: होगा।
0: में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
1: तो
0: जी
1: अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन हैं, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही करते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए,
0: पढ़िए
1: किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: ही राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना है तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना। अच्छी बात है, सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल ये बात, बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगूसराय, इश्क में मरजावा, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ, और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है, या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
2: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं। बट

0: कि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो
1: जी
0: उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं. सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर. मुझे लगता
1: जी
0: है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था. तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस.
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी,
0: हाँ
1: लेकिन जब ये तय किया होगा कि अब अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
0: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा. और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था
1: जी
0: अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था. और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज़ निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज़ निकाल के
1: जी
0: दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ. तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था. तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया. तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया. और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको,
1: जी
0: दूरदर्शन कशीर, उस पर मैंने बहुत सारे शोज़ किए, टेलीविजन सीरीज़ जो कभी 7 एपिसोड कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया. तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का.
1: जी तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम
0: हाँ, बेस
1: करते
0: बन
1: करते.
0: गया,
1: जी
0: एब्सोल्युटली.
1: तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो
0: हाँ
1: मुंबई का
0: हाँ
1: जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी? किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
0: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम
1: जी
0: लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे, हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए,
1: जी
0: हम बिल्कुल बेघर हो गए थे उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया, कि
1: अच्छा
0: मुंबई इसलिए आऊँगा
1: जी
0: कि नौकरी भी करूँगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना ज़रूर मैं ट्राई करना चाहूँगा. और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा. और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो
1: जी
0: होती है ना वो इंसान को चुनती है. सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज़ की तरफ देखा ही नहीं.
1: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित, मुल्क की अगर हम बात
0: हाँ,
1: करें?
0: मुल्क था और वो
1: जी
0: पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत, ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है. और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया,
1: जी
0: मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस
1: जी
0: गॉड ही रह गया. सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे.
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही थी, क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
0: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से.
1: जीना या मरना या,
0: जी हाँ.
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत.

0: विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं।
1: जी
0: जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए,
1: जी
0: कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे, या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है,
1: जी
0: और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी, जो
0: जी
1: उसमें बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है,
0: जी
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था। उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय, मैं ये दोनों शोज कर रहा था। ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा,
0: जी
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइप
0: टाइप
1: कास्ट कर
0: कास्ट
1: दिया जाता है
0: जी
1: एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहाँ से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे, तो कभी भी फिर
0: हाँ
1: तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा?
0: जी
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं, और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं, तो या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था, और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना, जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो।
0: जी
1: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया, तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया, और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी।

0: तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं, तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर
1: जी
0: वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
1: जी
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज़ कर रहा होता
1: जी
0: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और
1: जी
0: आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
1: जी वो
0: सिर्फ
1: स्वीकार करना बहुत
0: सिर्फ
1: जरूरी है।
0: उनकी वजह से। मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान मैं
1: जी
0: मानता हूँ, यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस हैं, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ही ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं, हम देख सकते हैं इनको और
0: बिल्कुल
1: स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी
0: बिल्कुल,
1: बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है,
1: जी
0: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान दे के प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा।
1: जी तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्री राम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं, उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ,
1: जी
0: और मैं उनके मंदिर जाया करता था, और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी था उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक एक एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था,
1: जी
0: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीज़ों को आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली आए।
1: आनंद फिल्म से
0: बिल्कुल
1: जी।

0: तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है. सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं. लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं.
1: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए।
0: जी
1: इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है,
0: जी
1: जब सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज़ का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं यहाँ, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पर आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से ज़रूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त
0: जी
1: आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ,
0: जी
1: तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
0: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
1: मेरा
0: कितने
1: जो
0: घंटों का?
1: पॉपुलर शो था मायका, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
0: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें
1: हाँ,
0: लास्ट के थ्रू
1: जिसमें
0: इनका.
1: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते
0: जी
1: थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर।
0: जी
1: और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये
0: और तब तक
1: बहुत,
0: बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आके
1: फिर
0: वापस
1: जब
0: शूट.
1: ये 2 दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद वापस
0: जी
1: से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
0: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है. तो
1: सारी
0: कोई
1: यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स
0: हाँ
1: अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू

0: नहीं एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का हम सुन ले सब।
0: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है, अपना अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को,
1: जी
0: क्योंकि कई
1: बिल्कुल,
0: बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और
0: जी
1: यही चीज़ है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं।
0: जी
1: क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है।
0: जी
1: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं, वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं।
0: जी
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट, आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना ज़रूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया।
0: जी
1: लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग ख़राब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आपका दिमाग भटक सकता है।
0: जी
1: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता

0: है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से बड़ा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है,
1: जी
0: वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से परे
1: खुश होके तुरंत कि हम ये
0: क्लब्स
1: सब
0: में
1: कर रहे
0: जाते
1: हैं
0: हुए या
1: जी
0: पार्टीज में जाते हुए, उस पर ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीज़ें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं, उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये
1: कल क्या
0: बहुत
1: होगा आपको
0: जरूरी
1: करना
0: चीज़ है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी। और जैसे कि आप इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे।
1: जी
0: अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके
1: जी
0: बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो
1: जी
0: ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है।
1: जी
0: यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
1: जी
0: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज़ कर रहे हैं। वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है। कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
1: जी
0: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है। कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया
1: वर्टिकल रख
0: जाता है,
1: दिया
0: कभी
1: जाता
0: हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है,
1: जी
0: लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार
1: जी
0: मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया। ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं,
0: जी हाँ,
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सब का क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं,

0: वहाँ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में,
1: जी
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी
1: जी
0: मैं वहाँ जाता हूँ। और ख़ासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज़ हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो US की काफ़ी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें।
1: जी
0: ये एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है, जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28 अगस्त को वो UK में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मैं
1: जी
0: चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मज़े की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे,
1: जी
0: वहाँ पर यहाँ की एक चैनल वहाँ पर टेलीकास्ट होती है
1: जी
0: जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहाँ पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहाँ गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहाँ कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है,
1: जी
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन
1: पहुंच गए
0: एक्टर वहां
1: जी
0: कैसे हूँ। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब
1: यहाँ भी
0: यहाँ
1: फैन
0: के
1: फॉलोइंग है
0: लोकल लोग तुम्हें
1: जी
0: पहचान रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ। आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बींग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक
1: जी
0: इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा,
1: जी
0: मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली,
1: जी
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है, कोई कुछ है, तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ।
1: जी
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है, जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं, एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो,
1: जी
0: ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो, ही वॉज प्लेइंग माई डैड इन दैट शो, इन दैट पायलट। वेन आई सॉ हिम, मेरे लिए वो, मतलब मेरा एक, मैं ना फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ, और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे, और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया, और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे, और मैंने कहा काका, मतलब मेरे लिए ये एक, मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा, एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे।

0: को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के।
1: तो वही सुन लेते
0: बिल्कुल।
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो, जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची
0: बावर्ची
1: बावर्ची
0: तो
1: एनी
0: बस
1: डे मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी,
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना
0: हाँ बार बार देखी जाती थी, बागवान
1: अपने
0: से पहले यही देखी जाती
1: हाँ,
0: थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग
0: स्टार
1: स्टार,
0: जी, उनका एक अलग ही चार्म था, नमक
1: अलग ही
0: हलाल,
1: चाम था।
0: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं कुछ
1: बिल्कुल,
0: और बन के आते हैं और फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं,
1: हाँ
0: उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
1: ये
0: जा
1: सब
0: सकता है
1: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
0: जी।
1: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है।

0: तो निजी जीवन और करियर को अलग-अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
0: जी
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
0: जी
1: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है,
0: जी
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
0: जी
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका विनीत
0: जी
1: रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: जी
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो
0: विनीत रैना
1: विनीत
0: बन
1: रैना है
0: जी
1: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
0: जी
1: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं। शायद इतने साल से
1: देखिए
0: काम
1: हमेशा
0: करते
1: तो
0: करते आपको ये
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है,
0: अच्छा
1: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहाँ पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए,
0: जी
1: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम ख़त्म किया, सीन पूरा ख़त्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम ख़त्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ, और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सेक्रीफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और
0: जी
1: ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस
0: एक
1: मेंटेन करना
0: बैलेंस
1: आसान रहता है।
0: जी, और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
1: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
0: ठीक
1: क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है मैं आपको बताऊंगा।
0: है, बिल्कुल।
1: चांदनी

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ,
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता
0: क्रश
1: है
0: जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहाँ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये जाता
1: हाँ
0: है गाना।
1: जी हाँ,
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो अगर
1: हाँ,
0: आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का, मुझे लगता है, सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे।
0: जी
1: उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
0: जी
1: उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी,
0: जी
1: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया, और मैं गया,
0: जी
1: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था, और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोज डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। तो आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मज़ा आया और दोबारा आना चाहूँगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ इस कभी धूप और बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दीजिए और सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी। लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है? और हम देखते भी हैं, जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उन्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले की बात और थी, लेकिन आज शिक्षित होना उतना ही ज़रूरी है जितना आज के समय में बाकी काम है। इसलिए तो साक्षरता इतनी ज़रूरी है और इसे साक्षर होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है। साथियों, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम हर छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। और हम देखते भी हैं, जो लोग साक्षर नहीं होते हैं वो लोग दवाई के पैकेट पर लिखी जानकारी समझनी हो, बैंक में कोई फॉर्म भरना हो, या फिर अपने अधिकारों और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेना हो, इन सारे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए साक्षरता हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और साक्षरता पुरुष नहीं महिला हर वर्ग को होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की साक्षरता दर उस देश के विकास दर को आगे बढ़ाती है। साथ ही अगर महिला शिक्षित होती है तो वो अपने आने वाली कई पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है। इसलिए साक्षरता के लोगों को जागरूक करने के लिए आज का दिन चुना गया। दोस्तों, आज 8 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि लोगों को ये समझाना भी है कि शिक्षा उनके जीवन को बेहतर बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साक्षरता किसी व्यक्ति को केवल किताबें पढ़ने के लिए योग्य नहीं बनाती, बल्कि उसे सोचने, समझने, निर्णय लेने और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का आत्मविश्वास देती है। और आज के समय में साक्षरता का मतलब केवल कागज़ पर लिखने शब्दों को पढ़ना लेना नहीं है। दोस्तों, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और जानकारी का भंडार है। इसलिए हमें ये भी सीखना जरूरी है कि इंटरनेट पर मिलने

वाली हर जानकारी सही नहीं होती। सही जानकारी को पहचानना, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना और तकनीक का सही उपयोग करना भी आज की साक्षरता का हिस्सा है। साथियों, अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका लाभ केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो अपने परिवार को जागरूक करता है, अपने बच्चों को शिक्षित करता है और धीरे धीरे समाज को शिक्षित करता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उम्र निकल गई, अब पढ़कर क्या करेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें जो अभी भी शिक्षा से दूर है। तो दोस्तों, ये थी बातें इस खास विषय से जुड़ी, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: वेलकम बैक दोस्तों। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है और भारत हमारा ऐसा देश है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। और आज के बदलते समय में युवाओं के लिए जरूरी है कि उनके पास शिक्षा के साथ साथ कोई ऐसा कौशल, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एक अलग सी चीज हो, हुनर हो, जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसलिए आइए साथियों सुनते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है युवा और कौशल, उज्जवल भविष्य की नींव। वार्ताकार है हिमांशी।
1: नमस्कार, मैं हिमांशी। युवा दोस्तों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रही हूँ उस विषय के साथ जो केवल युवाओं का ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का विषय है। और दोस्तों, वो विषय है युवा और कौशल, उज्जवल भविष्य की नींव। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उसके युवा होते हैं। यदि युवा शिक्षित, कुशल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार हो तो कोई भी देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन केवल डिग्री होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। आज के समय में सफलता का सबसे मजबूत

आधार है कौशल, अर्थात अपनी योग्यता को सही दिशा में विकसित करना। आज का युग तेजी से बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, रोजगार के स्वरूप बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऐसे समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें अपने अंदर ऐसे कौशल का विकसित करना होगा जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, दो युवा हैं, दोनों ने पढ़ाई की है, दोनों के पास डिग्री है, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक युवा अब भी अवसरों का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहा है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कौशल का। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और सफलता की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कहा जाता था अच्छी पढ़ाई कर लो जीवन बन जाएगा, लेकिन आज समय कहता है अच्छा सीखते रहो तभी जीवन आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि कौशल आज केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। कौशल का अर्थ केवल तो कोई तकनीकी काम सीख लेना नहीं है, कौशल का अर्थ है अपने ज्ञान को उपयोगी बनाना। यदि आपके पास अच्छे विचार हैं और आप उन्हें कार्य में बदल सकते हैं, यदि आप लोगों से प्रभावी संवाद कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, टीम के साथ काम कर सकते हैं, नई परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सकते हैं, तो यही आपका वास्तविक कौशल है। आज के युवा यदि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, समय का सम्मान करें, नई नई चीज़ें सीखते रहें और अपने कौशल को निरंतर निखारते रहें, तो वे न केवल अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह संदेश आज भी प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें अपने सपनों को केवल देखना ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। प्रिय साथियों, आज का युवा जानकारी से भरपूर है, मोबाइल में पूरी दुनिया की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जानकारी का और योग्यता में बहुत बड़ा अंतर होता है। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसने जानकारी को अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य का हिस्सा बना लिया हो। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, डिजिटल तकनीकें हैं, नई अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को बदल रही है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि मशीनें क्या कर सकती हैं, बल्कि यह है कि हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जो हमें हमेशा उपयोगी बनाए रखे। और उसका उत्तर है सीखते रहने की आदत, क्योंकि भविष्य उसी का है जो हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है। प्रिय श्रोताओं, यदि हम अपने आसपास देखें तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने केवल अपने कौशल के बल पर सफलता प्राप्त की है। किसी ने एक छोटे से गांव में ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया, किसी ने मोबाइल फोन से पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षा पास की, किसी ने सिलाई डिजाइनिंग कंप्यूटर या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना रोजगार शुरू किया। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी शिक्षा नहीं थी बल्कि सीखने की इच्छा और कौशल था। एक समय था जब लोग सोचते थे कि सफलता केवल बड़े शहरों में रहने वाले को ही मिलती है, लेकिन आज इंटरनेट ने गांव और शहरों के बीच की दूरी कम कर दी है। यदि आपके पास ज्ञान है, कौशल है और मेहनत करने का साहस है, तो दुनिया का कोई भी मंच आपके लिए छोटा नहीं है। आज सरकार भी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और डिजिटल इंडिया। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन केवल सरकार की योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं भी नई नई चीज़ें सीखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। यदि हम सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय ऑनलाइन कोर्स, नई भाषाएं, कंप्यूटर या अन्य उपयोगी कौशल सीखें तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। दोस्तों, याद रखिए, कौशल वह पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो जीवन भर आपका साथ देती है। युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
आत्मविश्वास, मेहनत और सही कौशल के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव।

0: नहीं है। प्रिय युवा साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है यदि हमारे पास उत्कृष्ट कौशल होगा तो केवल नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार देने की क्षमता भी हमारे भीतर होगी। यही अंतर है नौकरी खोजने वाले और अवसर बनाने वाले व्यक्ति में। कौशल केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, यह आत्मविश्वास देता है। सोचिए, यदि एक युवा डिजिटल तकनीक सीख ले तो वह अपने गांव से दुनिया के किसी भी देश के साथ काम कर सकता है। यदि एक युवती उद्यमिता और वित्तीय ज्ञान सीख ले तो वह स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती है। यदि किसान आधुनिक खेती का कौशल सीख ले तो वह मेहनत कई गुना अधिक फल दे सकती है। यानी कौशल केवल व्यक्ति नहीं बदलता, परिवार बदलता है, समाज बदलता है और अंततः राष्ट्र बदलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कौशल किसी प्रशिक्षण केंद्र से नहीं बल्कि एक निर्णय से शुरू होता है। वह निर्णय है कि हमें सीखना कभी बंद नहीं करना होगा। दुनिया बदलती रहेगी, तकनीकें बदलती रहेंगी, रोजगार बदलते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सीखने की क्षमता को अपना सबसे बड़ा कौशल बना लेता है उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा की आबादी है। यदि वह युवा वर्ग सही दिशा में अपने कौशल का विकास करे तो भारत केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र भी बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल अंक प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें जो ईमानदारी, अनुशासन, नेतृत्व, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने की भावना से परिपूर्ण हो। क्योंकि सफलता केवल बुद्धिमान लोगों को नहीं मिलती बल्कि उन लोगों को मिलती है जो निरंतर सीखते हैं, मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। प्रिय युवा साथियों, अपने जीवन का लक्ष्य केवल नौकरी मत बनाइए। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिसकी आवश्यकता हर जगह महसूस हो। ऐसा इंसान बनिए जो समस्या नहीं समाधान लेकर आए। और अंत में मैं आप सब से एक छोटा सा संकल्प चाहती हूँ। हर वर्ष एक नया कौशल सीखेंगे, हर महीने एक अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, हर सप्ताह स्वयं से एक नया प्रश्न पूछेंगे, हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों को केवल देखेंगे नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी करेंगे। याद रखिए, डिग्री आपको एक दरवाजे तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की चाबी कौशल ही होता है। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और कौशल उस ताकत की सबसे बड़ी पहचान। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहां हर युवा यह कह सके, मैं अपने भविष्य का इंतजार नहीं करूँगा, मैं अपने कौशल से अपना भविष्य स्वयं बनाऊंगा। अंत में मैं अपनी बात इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। सपनों को सच करना है तो मेहनत को आदत बनाइए, ज्ञान के साथ कौशल अपनाइए, हर दिन कुछ नया सीखिए और अपने उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्वयं रखिए। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां युवा शिक्षित हो, कुशल हो, आत्मनिर्भर हो और अपने सपनों को साकार करने का साहस रखता हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: दोस्तों, तो हमने इस वार्ता के द्वारा जाना कि युवा के पास शिक्षा के साथ साथ कौशल का होना कितना ज़रूरी है। वार्ता का विषय था युवा और कौशल, उज्ज्वल भविष्य की नींव, और वार्ताकार थे हिमांशी। इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दूसरी चर्चा की ओर। फ्रेंड्स, हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन वास्तव में युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि आज की भारत की ताकत भी है। हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा मतदान करते हैं और उनका एक वोट देश की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम मतदान करते हैं तो हम केवल किसी उम्मीदवार को नहीं चुनते हैं, हमारा वोट ये डिसाइड करता है कि अगले 5 वर्ष तक हम अपने देश को किन लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं। और हम ये तय भी करते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, हमारे देश का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, युवाओं की पहली जिम्मेदारी है कि वो मतदान जरूर

0: दूर करें। किसी पर दबाव, लालच या अफवाह के आधार पर नहीं, अपना वोट उन्हें दें जिन्हें वो चाहते हैं। उम्मीदवार और उनके कार्यों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और अपनी समझ के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लें और साथ ही साथ दूसरों को भी मतदान देने के लिए जागरूक करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: अजय, डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

वेलकम बैक दोस्तों। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, और जब वही विचार हमारी सोच को बदल देता है तो हमारी ज़िंदगी भी बदलने लगती है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। हम जैसा सोचेंगे हमारा भविष्य भी वैसा ही होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छा सोचिए और अपने भविष्य को आगे लेकर जाइए। इसी के साथ अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। और बताओ बहन लोगन, का हाल समाचार बाप सब लोगन का? उम्मीद बा कि आप सब लोगन स्वस्थ और मस्त हुई हैं। बहन, आप लोगन स्वस्थ रहें एक खातिन देखा, हम लोगन हमेशा अपने बैठकी में स्वास्थ्य से जुड़ल सब जानकारी लेकर जुटल जाला। जैसे ये समय बरसात के समय बा, मौसम बा, तो इसने भी हम लोगन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे के चाहिए। कहीं घरे में इकट्ठा कूड़ा हो तो ओके बाहर गड्ढा में फेंक दें, अगर खर पतवार हो तो ओके जला दें, नहीं तो ओके बाहर गड्ढा में डाल दें। कोनो डब्बा गगरी या बाल्टी हो जिसमें पानी इकट्ठा हो ओके भी गिरा के उल्टा करके रख देवें, ताकि जो मच्छर माछी का प्रकोप है वो बिल्कुल भी न बढ़े। अगर संभव हो तो गमकसिन का छिड़काव चारों ओर करवा दें, ताकि कोनो भी प्रकार का जीव जंतु ना आ पाए। आजकल देखा थोड़ा थोड़ा सा भी लापरवाही जान के बन जाला। एक खातिन हमेशा सावधानी रखें और प्रयास करें कि हमेशा अपने घर में जो खाना पीना हम लोगों रसोई में बनावत हैं ओके एकदम साफ सफाई से बनावें। गंदा पानी का सेवन बिल्कुल ना करें, पानी की हमेशा उबाल के या उसमें ओके पोटास डाल के ओकर ही प्रयोग करें। जहाँ तक कहे का मतलब है कि जौन भी अगर हम लोगों के शरीर में गंदा चीज़ जात बा तो ओकर दुष्प्रभाव हम लोगों के स्वास्थ्य पर जरूर पड़ी। वही लोगन बात बात कही तो हम लोगन करल जाए, लेकिन अभी अपने कार्यक्रम का शुरुआत एक गीत से हम लोगन करल जाए। नीलिमा श्रीवास्तव जी हैं, एक दादरा सुनावत हैं, उनकर गीत सुन के आगे हम लोगन बात बात कही फिर करल जाए। तो देर कोने बात कहें, आवे उनका दादरा सुनल जाए।

0: बहिन लोगन देखे गीत हम लोगन सुनल गई और गीत सुन के मन हो गई एकदम फरीच। अब देखा मन जब फरीच हो जाला तो कोनो भी बात अगर हम लोगन करते हैं तो एकदम सीधे मन पे जाके बैठला। और देखे आज यानी कि 8/9/2026 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को द्वारा मनावल जात बा, ताकि समाज में साक्षरता के महत्व के मौलिक अधिकार के रूप में उजागर कर जा सके। ई दिवस मनावे के पीछे का उद्देश्य जागरूक करल, जैसे व्यक्तिगत सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर साक्षरता का आवश्यकता के बारे में लोगन के जागरूक करना है। संगे संगे अशिक्षा का मुकाबला करल, वैश्विक स्तर पर निरक्षरता के कम करल और शिक्षा के सुलभ बनावल है। ये दिवस मनावे के शुरुआत यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1965 के अपन 14वां आम सम्मेलन में 8 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित कैल गेल। ई दिवस में अगर जगह जगह गोष्ठी का भी आयोजन कल जाला और निरक्षरता जब रहला ना तब देखा गरीबी आवला, बेरोजगारी आवला और शोषण भी होला। एक खातिर सबके शिक्षित होवल बहुत आवश्यक मानल जाला। बुनियादी साक्षरता जैसे कि अपन नाम पता लिखल हर व्यक्ति के खातिर बहुत जरूरी होला। डिजिटल साक्षरता जैसे देखा मोबाइल से पैसा कैसे भेजल जाला, फार्म कैसे भरल जाला, अगर फर्जी अखबार बातों के पहचानल कैसे जाला, ये सब जानकारी देवल जाला। साथ में वित्तीय साक्षरता जौन होला जैसे कि बैंक ब्याज केसीसी बीमा समझल किसान भैया हो या बहन लोगन के खातिर सबसे जरूरी मानल जाला। साथ में कानूनी साक्षरता के भी जरूरी होला, जैसे अपन अधिकार जमीन का कागज समझल बहुत जरूरी मानल जाला। यही से कहल जाला जिस सब पढ़े सब बढ़े। यही के साथ ही आज अपने कार्यक्रम में साक्षरता और शिक्षा से सामाजिक और आर्थिक बदलाव संभव विषय पर डॉक्टर निधि जायसवाल जवन की उप प्रधान अध्यापिका के पद पर हई उनसे बातचीत करते हैं अपन संजू सिंह बहिन। और हम तो कहते हैं ना कि बिना देर के लिए आवे इनकर जानकारी हम लोगों ने सुनल जाए फिर आगे बात बात कही करल जाए।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं कहते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में हर किसी को पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। साक्षरता क्यों जरूरी है, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं

0: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई डॉक्टर निधि जायसवाल जी, जो उप प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्यरत हैं, तो आपसे जानते हैं कि साक्षरता क्यों जरूरी है और साक्षरता के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो निधि जायसवाल जी, आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: निधि जी, देखें, सबसे पहले हमारा यही आपसे प्रश्न होगा कि साक्षरता से आप क्या समझती हैं?
1: सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार करना चाहूंगी। आज साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए बड़े ही खुशी की बात है। तो सबसे पहले साक्षरता के बारे में जानना है तो हम यही कहेंगे कि साक्षरता का आधार पढ़ना, लिखना और समझना है। लेकिन आज इसका अर्थ इससे कहीं व्यापक है। एक साक्षर व्यक्ति किसी सूचना को पढ़कर उसका अर्थ समझ सके, आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके और उसका उपयोग अपने जीवन में कर सके, यही वास्तविक साक्षरता है।
0: जी बिल्कुल। अच्छा निधि जी, आज के समय में अगर हम बात करें तो जैसे कि डिजिटल साक्षरता या फिर जो वित्तीय साक्षरता है और स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता है, तो ये बताएं कि साक्षरता हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह से आसान बना सकती है?
1: साक्षर व्यक्ति दवा की पर्ची हो और उसका निर्देश पढ़ सकता है, बैंक से संबंधित जानकारी समझ सकता है, फॉर्म भर
0: जी
1: सकता है, बस या ट्रेन की जानकारी भी पढ़ सकता है और
0: हाँ जी
1: सरकारी योजनाओं की जानकारी को भी प्राप्त कर सकता है बिना किसी के सहयोग के।
0: जी
1: दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम हो जाता है, अगर वो साक्षर है तो।
0: अच्छा, अक्सर लोग देखें साक्षरता और शिक्षा को एक ही मान लेते हैं, तो दोनों में आपको कुछ अंतर लगता है?
1: बहुत अंतर है एक्चुअली। जो साक्षरता है ना, वो
0: जी
1: साक्षरता शिक्षा की पहली सीढ़ी है। पढ़ना,
0: अच्छा
1: लिखना, सीखना ये साक्षरता है, जबकि शिक्षा व्यक्ति की ज्ञान, सोच, व्यवहार, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करती है। इसलिए
0: जी
1: हमारा लक्ष्य केवल व्यक्ति को साक्षर बनाना नहीं, बल्कि उसके जीवन भर सीखने के अवसर को उपलब्ध कराना होना चाहिए। केवल साक्षर कर देना ही समाज को बदलाव के लिए जरूरी नहीं है, शिक्षित
0: शिक्षित
1: होना
0: करना
1: और भी ज्यादा जरूरी है।
0: जी। अच्छा देखिए, अब सामाजिक बदलाव की अगर हम बात करें तो शिक्षा समाज में किस तरह से परिवर्तन ला सकती है?
1: बिल्कुल, समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो कहा जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा व्यक्ति की सोच को व्यापक बनाता है।
0: हाँ जी
1: जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अंधविश्वास, भेदभाव, इन सामाजिक कुरीतियों जैसे बातों पे ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन अगर
0: जी
1: व्यक्ति शिक्षित है तो शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझता है। जब
0: जी
1: समाज के अधिक लोग शिक्षित और जागरूक होंगे ना, तो समानता, स्वच्छता, महिला सम्मान और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि सामाजिक बदलाव होगा।
0: जी क्या शिक्षा सीधे तौर पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है?
1: बिल्कुल करती है। अगर हम एक एग्जाम्पल भी लें कि अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और एक व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, तो आप सोच सकती हैं कि अगर वो कहीं काम करने जाए, सेम काम के लिए अगर जाए कोई, तो उसे क्या मिलेगा? जो नहीं पढ़ा लिखा है उसे क्या मिलेगा? उसे एक दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी, और जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको कुछ स्किल होगा, उसका कुछ कौशल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो एक दिन का
0: बिल्कुल
1: आप कह सकते हैं कि वो जो प्राप्त करेगा, वो जो कमाएगा और वो जो पढ़ा लिखा कमाएगा, उसमें कहीं ना कहीं क्या ज्यादा अंतर होगा। तो हम ये कह
0: जी
1: सकते हैं कि जो शिक्षा है व्यक्ति को
0: जी
1: ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, इससे उसको रोजगार, स्वरोजगार और व्यवसाय के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जैसे अगर किसान
0: जी
1: की हम बात करें, यदि किसान कृषि संबंधित नई तकनीकी, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, सरकारी योजनाओं को अगर समझता है तो वो बेहतर निर्णय ले सकता है। और वहीं कहीं जो
0: जी
1: पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो इन सब के बारे में बिल्कुल निर्णय नहीं ले पाएगा और वो पीछे रह जाएगा। इसी तरह
0: जी
1: किसी युवा को अगर तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा मिलती है तो उसके लिए रोजगार के नए नए रास्ते खुल जाते हैं, जबकि बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या होता है कि केवल और केवल दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हैं या फिर खेती वाली मजदूरी कर सकते हैं।
0: जी देखिए, अगर हम बात करें अपने आदिवासी क्षेत्रों में, तो ये बताएं कि साक्षरता किस तरह से परिवर्तन ला सकती है? आदिवासी जो क्षेत्र हमारे जंगल पहाड़ इलाकों में।
1: हमारा जो भी इलाका है, ये
0: जी
1: हम जहाँ रहते हैं, ओबरा हो गया, ये भी
0: जी
1: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र ही माना जाता है। तो
0: जी
1: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता का महत्व तो और भी अधिक हो जाता है। व्यक्ति साक्षर है, सब कुछ समझता है, पढ़ लिख सकता है, तो सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती हैं, कृषि तकनीकों, स्वास्थ्य सेवाओं और अपने अधिकारों की जानकारी को वो स्वयं प्राप्त कर सकता है। अब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हमेशा किसी न किसी से पूछेगा कि देखो ऐसा क्या है, इसको पढ़ के सुनाओ। हाँ, और
0: बिल्कुल
1: महिलाओं और युवाओं की शिक्षा को बढ़ने से परिवार का निर्णय लेने में भी एक मजबूती मिलती है महिलाओं
0: जी
1: को, और आने वाली
0: जी
1: पीढ़ियों को भी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिलती है। यानी महिलाओं को भी पढ़ाना उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने किया तो महिला साक्षरता को सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार भी माना जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा कि अगर देखा जाए किसी भी देश, किसी भी जगह में लगभग 50% की जो पॉपुलेशन होती है वो किसकी होती है? महिलाओं की होती है।
0: आदि

0: आबादी
1: अगर
0: कही जाती
1: हाँ
0: है।
1: कि भाई हम आधे हम हैं, तो अगर ये जो आधी आबादी है उनको हम
0: जी
1: एकदम पीछे रख दें तो हमारा समाज भी तो आधा ही बढ़ेगा ना।
0: बिल्कुल
1: और एक बात और भी है, अब चूंकि जो महिलाएं हैं अगर वो शिक्षित और जागरूक हैं तो अपने परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक निर्णयों में वो भी अधिक प्रभावी ढंग से भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि महिलाओं का एक और जिम्मेदारी होती है अपना घर संभालना, बच्चों को संभालना, लेकिन अगर
0: जी
1: वो संभालने के लिए भी अगर वो शिक्षित हैं तो बेहतर ढंग से संभाल पाएंगी। जब महिला
0: जी
1: पढ़ती है ना तो उसका लाभ केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मिलता है, अगली पीढ़ी को मिलता है। इसलिए महिला साक्षरता ना वास्तव में परिवार और समाज के विकास में एक बहुत बड़ा निवेश है तरह से।
0: जी आज जैसे देखिए मोबाइल इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे में डिजिटल साक्षरता का क्या महत्व आप समझती हैं?
1: देखिए कुछ लोग तो डिजिटल साक्षरता का मतलब केवल यही समझते हैं कि जिसको मोबाइल चलाना आ गया तो मतलब वो डिजिटल साक्षर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल साक्षरता का केवल मोबाइल चलाना नहीं है, इसका
0: जी
1: मतलब है ना कि व्यक्ति इंटरनेट पर तो जितनी भी जानकारियां उपलब्ध हैं उसका समझदारी से इस्तेमाल करें, किसी भी तरह के गलत या भ्रामक जानकारी से सावधान रहे। बहुत तरह के देखिए आजकल स्कैम हो रहे हैं, तो वो सब चीज से वो सावधान रहे। अगर वो डिजिटल अवेयर रहेगा, डिजिटल साक्षर रहेगा, तो
0: जी
1: वो कोई भी उसे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ऑनलाइन
0: जी
1: बैंकिंग हो गया, सरकारी सेवाएं हो गई, शिक्षा और रोजगार की जानकारी के लिए डिजिटल कौशल का उपयोग किया जाता है, ये बहुत उपयोगी भी है। साथ ही जो पासवर्ड है, व्यक्तिगत जानकारी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बारे में भी जागरूक होते हैं लोग अगर डिजिटल साक्षर होते हैं। नहीं तो अगर हमें कोई जानकारी नहीं है, मोबाइल तो भाई आजकल सबके हाथ में, और कुछ नहीं तो बात करते हैं, और उसी में कोई स्कैमर का फोन आ गया तो अगर हमें नहीं जानकारी है कि तो हम अपने पासवर्ड वगैरह सब कुछ दे देंगे उनको, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डिजिटल साक्षरता भी बहुत जरूरी है, यानी कि हम जाने कि क्या क्या चीजें हो रही है डिजिटली, क्या क्या उसका हमें फायदा है और क्या क्या नुकसान है। और आजकल क्या है ना कि लोग जो पढ़ रहे हैं ढेर सारी डिग्री हो जा रही है लेकिन
0: जी
1: कौशल वो
0: कौशल
1: नहीं डेवलप हो पा रहा है। देखिए अगर बेरोजगारी जो समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन कौशल नहीं है। तो पढ़े लिखने होने का एक डिग्री होना ही बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आज ज्ञान के साथ कौशल भी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर,
0: जी
1: तकनीकी कार्य, कृषि आधारित कौशल, हस्तशिल्प, उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी शिक्षा जो है वो युवाओं को रोजगार योग्य बनाने में मदद करती है।
0: जी
1: इसलिए हमें ऐसी शिक्षा पर जोर देना चाहिए जो ज्ञान
0: जी
1: के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी प्रदान करे।
0: जी देखिए वैसे तो हमारी सरकार और विद्यालयों के जो हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं जो भी है वो अपना मेहनत कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे आम नागरिक हैं साक्षरता को बढ़ाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं?
1: हर व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है, यदि हमारे आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को हम मदद कर दें जो पढ़ना लिखना
0: जी
1: सीखना तो चाहता है,
0: जी
1: नियमित स्कूल नहीं जा पाता है किसी और कारण से, तो हम
0: जी
1: उस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हैं और बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए अपने आसपास के परिवारों को ना हम प्रेरित कर सकते हैं और घर में पढ़ने का वातावरण बनाएं। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो इससे भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और गांव में
0: जी
1: पुस्तकालय हो, पठन समूह और सामुदायिक शिक्षा गतिविधियों का भी उपयोग किया जा सकता है।
0: जी निधि जायसवाल जी, देखें आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत हुई इस महत्वपूर्ण विषय पर। सभी श्रोताओं से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी?
1: अंत में मेरा यही संदेश है कि साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि आत्मविश्वास और बेहतर जीवन की ओर पहला कदम है। और आइए हम सब लोग ये संकल्प लें कि अपने परिवार और आसपास के किसी भी बच्चे, युवा या वयस्क को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। एक व्यक्ति पढ़ेगा तो उसका जीवन बदलेगा, लेकिन जब पूरा समाज पढ़ेगा तो देश और समाज दोनों बदलेंगे।
0: जी डॉक्टर निधि जायसवाल जी, तो श्रोताओं देखें आज हमारे साथ थी डॉक्टर निधि जायसवाल जी जो कि उप प्रधानाध्यापिका है। श्रोताओं इनकी बातों को अगर हमने अमल कर लिया तो निश्चित तौर पे हमारा देश और समाज दोनों ही आगे बढ़ेगा। और निधि जायसवाल जी इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: भाई लोगन देखें कितना बढ़िया जानकारी दे लेन हैं अपन निधि जायसवाल जी, और हम लोगन भी देवल जय बहुत बहुत धन्यवाद उनके। और धन्यवाद के संगे हम तो बहन आप लोगों से यहो कहल चाहब कि देखा बहन शिक्षा चाहे बालक हो या बालिका दोनों के

समान रूप से देवल जरूरी होला। बच्चवन भेदभाव नाही जानेलन, उनके जवन हम लोगन सिखाइल जाला ना उहे सीखेलन, और सिखावे के ही बात समानता के शिक्षा द, संस्कार द, समान रूप से बचपन के ही समान विकास होई। और बहिन समानता के मतलब एक जैसन कपड़ा पहरावल नहीं होला, बल्कि एक समान अवसर देवल होला। हम लोगन के घर में जब भी बेटा बेटी के विषय में बात होला तो बेटा होवे के विशेष लाभ देवल जाला और बेटी से कहल जाला कि त रसोई में तू जा खाना पकावे में मदद कर, जबकि ये बिल्कुल भी गलत बात बा। बेटा बेटी दुनू को समान कार्य सिखावे के चाहिए, समान शिक्षा देवे के चाहिए, समान अधिकार देवे के चाहिए। और सब बहन लोगन अगर हम कहें कि घर में अगर समानता ही अगर हमके दिखावे के बाद, तो पांच देखा नियम हम लोगन के अपना लेवे के चाहिए, जैसे कि प्यार और डांट दोनों के बराबर मिले। जैसे कि देखा एक के हम गोद में बैठावत हैं, दूसरे के डांटत हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करे के चाहिए। अगर हम गोद दोनों दूठ बचवा हवन तो दोनों के समान रूप से देखें, चाहे तो गोद में बैठा के प्यार करी या तो दोनों के एक साथ हम लोग डांट लगाएं। गलती करें तो दोनों के समझाएं, प्यार करें तो दोनों के करें, मतलब एक तराजू पर ही बचपन के रखे के चाहिए। और साथ में देखा काम में भी भेदभाव एकदम नहीं करे के चाहिए। जैसे कि देखा लड़की बचिया लोगन हो हई हम लोगन का, तो उनके वो बर्तन काहे धोई हैं और लड़का ही काहे बाजार जाई। अगर देखा बर्तन धोए की बा तो 3 दिन अपन बेटा से धोवावे, 3 दिन बेटी से, यानी कि समान अवसर दोनों के देवे के चाहिए। क्या है कि अब का समय जोन बा वो बेटा और बेटी दोनों खातिर बहुत जरूरी बा, और बाहर निकल के दोनों के ही ऐसे सामना करे के पड़ला। रोटी बनावल, झाड़ू लगावल दोनों के सिखावे के चाहिए। ई जीवन देखा कौशल है, और ई जीवन के कौशल के जरूर सिखावे के चाहिए। और देखा आज से ही हम लोगन के लिस्ट बना ले कि हफ्ता में 3 दिन काम अपन बेटा करे, 3 दिन बेटी करे, यानी कि कोनो भी काम में समानता रखें। साथ में देखा पढ़ाई और सपना के भी बराबर रखे के चाहिए, जैसे बेटा इंजीनियर बनी और बेटी का शादी, ये सोचल बिल्कुल बंद कर देवे के चाहिए। दोनों से पूछे कि तुमके का बने के बा, बेटी के भी साइकिल चलावल सिखाई, बेटा के भी सिखाई, बेटा के भी रसोई में मौका दें और बेटी के भी। और ऐसे अगर हम लोगन तुलना करल जाए तो हम लोगन के घर में समान अवसर समानता बनल रही। साथ में तुलना हम लोगन अपने बच्चों में देखे कभी नहीं करे के चाहिए। जैसे कि देखा अपन बच्चवा अगर कम पढ़ल लिख मतलब कम कमजोर बा, तो दूसरे के देखा उनकर बेटवा देखा ढेर पढ़ल लिखल बा, ज़्यादा तेज बा, और ई कहे कि कहे से अपने बच्चवन के मन में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ला। और अक्सर देखे के भी ई मिलला कि दूसरे से तुलना करे पे अपने बच्चवन में हीन भावना आ जाला। तो देखा ईसन बिल्कुल भी नहीं करी, और अपने बच्चों के तारीफ करी। अगर थोड़ा सा भी कोनो काम बच्चों आपका करत हुआ तो उनकर तारीफ करी, तारीफ करे से मन मनोबल जोन बाना ई बढ़ाला। और बच्चा लोगन के भी मतलब जोन भी काम करत हुआ उनमें उनके प्रोत्साहित करी। ऐसे करे से अपन बचवा के भी जोन भी आगे करे के मन बा वो आपके खुल के आपके सामने कह सकी हैं। अगर थोड़ा सा भी आप उनके दबाव डलिए या उनके मना करी हैं तो देखा वो काम जोन भी करल चाहत हुआ वो बिल्कुल भी नहीं करे में उनकर मन लगी। तो देखा अपने बच्चों के अगर समान अवसर देवल चाहत हुआ तो उनके प्रोत्साहित करें, उनके जोन भी आपके काम कहत हो उनके सुनें। तो अगर आप अपने घर परिवार में अच्छा संस्कार दी हैं, अच्छा साक्षरता दी हैं, तो देखें आपका घर खुशियों से भर जाए। यही बाती के संगे हम तो कहब अपन नीलिमा श्रीवास्तव जी हैं, जो उनके एक थे पूर्वी सुनावल चाहते हैं, इनके इनकर गावल गीत हम लोगन चले सुन लेवल जाए।

वही लोग देखा, हम लोगन गीत सुनल जाता और गीत भी इतना बढ़िया अपन पूर्वी नीलिमा श्रीवास्तव जी सुनावत हैं। और देखे हम लोगन के चले के भी समय हो रहा बा अब, लेकिन चला चलावत आप लोगन से एक बात कहल चाहब कि जौने घर में तुलसी होला ना, वो घर में देखा वैद्य के जरूरत नहीं पड़ला। और देखा हम लोगन के बहुत पुरान समय से भी दादी नानी का कहल बा कि जहाँ तुलसी जी का पौधा बा वहाँ जल्दी बीमारी भी नहीं आवला। और देखा तुलसी जी भी दो प्रकार का होवलिन, एक श्यामा तुलसी एक रामा तुलसी, जेकर अलग अलग अपन देखो असर होला। अपन जो श्यामा तुलसी होलिन उस सर्दी खांसी में भी बहुत कारगर उनकर पत्ती होला। और जो रामा तुलसी जो होलिन जेकर पत्ता कनी हल्का रंगा होला, वो पेट के शरीर के जो त्वचा बा एकरे खातिर बहुत फायदे होला। और देखा एक होला वन तुलसी, ई जौन की जंगल में पावल जाला, ये बहुत ही खुशबूदार होला और ये बुखार मलेरिया इस सब में एकर बहुत फायदा करला। इस और देखें उनकर जौन औषधीय गुण बा ना, ये भी बहुत अच्छा होला। जैसे कि देखें 10 पत्ती तुलसी जी का, 3 ठो काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और शहद, एकर काढ़ा बना के अगर हम लोग सर्दी जुकाम में पियल जाए तो ये बहुत ही रामबाण होला। और दिन में 2 बार एक हम लोगन जब पियल जरूरी होला। और देखा ऐसे ना अपन जो इम्यूनिटी बूस्टर होला ये भी बढ़ला। और दिन में 2-4 से 5 पत्ती चबाए तो हम लोगन का शरीर का जो त्वचा बा ये बहुत ही सुंदर हो जाला। यही बात के संगे हम तो कहब कि आज का अपन कार्यक्रम यही सिमेंटल जाए। तो अपने गुलाबों बहन के लिए इजाजत, तो सब बहन लोगन के राम राम।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। बिहने 9वां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुई। ऐसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का एक उल्लेख के आज वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कैले।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित यह लेख आंगनबाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनबाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री कल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। सितंबर माह में चलने वाले इस अभियान के दौरान देश भर में समुदायों को महिलाओं, बच्चों और किशोरों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में नया नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियन आ सहायिकन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल भेलें। एह मौका पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में खास तौर से जिक्र कैलें।
2: कल से पोषण माह प्रारंभ हो रहा है। कल काशी में ये अभियान प्रारंभ होगा। अभियान के पहले एक सम्मानजनक मानदेय के साथ आंगनबाड़ी बहने और सहायिकाएं भी अपने आप को तैयार कर सके और साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारे स्मार्ट दिखाई दे, इसकी घोषणा हम डंके की चोट पर कर सके। इस दृश्य से मुझे आज अयोध्या धाम आना पड़ा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ कैले। ए दौरान यूपी टेक्स मित्रा पोर्टल, हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना और उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण और कौशल विकास योजना का शुभारंभ कैल गईल। साथही यूपी टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के तहत LOC या प्रोत्साहन राशि बांटल गईल। कॉन्क्लेव के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि पछिला 6 वर्ष में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में बढ़ोतरी भइल बा।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल अपेरल इकोनॉमी और 100 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल एंड अपेरल एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी पूरी शक्ति के साथ भागीदारी कर सके। पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 56% की यूपी के अंदर वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। प्रदेश के उत्पाद आज सैकड़ों इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच रहे हैं।
0: यह मौका पर उत्तर प्रदेश में निवेश संबंधी कई गो समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान कैल गई। प्रदेश के कई इलाकन में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग के मुताबिक आवे वाला 6 दिन ले बरखा का सिलसिला यही तरियन जारी रही। वहीं बरखा और बैराजन से पानी छोड़े के नाते प्रदेश का करीब 26 जिला बाढ़ से प्रभावित बाटे। सजो जगहन पर राहत और बचाव कार्य जारी बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बचाव कार्य को लगातार समीक्षा कर रहल हमें। ओहर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी अयोध्या और बलिया के तुर्ती पार में घाघरा आ लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरा के चिन्हा से ऊपर बह रहल हैं। पीलीभीत में शारदा आ देवहा नदी उफान पर हैं। सुल्तानपुर जिला के अखंड नगर थाना क्षेत्र के पसना गांव के लगे आज एगो स्कूल बस आ दुपहिया गाड़ी में भइल टक्कर में 3 जने के मौत हो गई। कादीपुर का CO विनय कुमार बतौलें कि हादसा ओ समय भइल जब एगो बस दुपहिया गाड़ी के ठोकर मार देहलस।
3: आज दिनांक 8 सितंबर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर में कादीपुर अखंड नगर मार्ग पर एक TVS मोपेड से 3 लोग जा रहे थे, जिसमें पिता पुत्र और उनकी माँ थी। इसको एक अज्ञात बस द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मृत्यु हो गई है।
0: दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026

0: बिस्मदे आवेदन आमंत्रित कल गई हो। यह पुरस्कारन के वितरण 3 दिसंबर के विश्व दिव्यांग दिवस के मौका पर हुई। राज्य स्तरीय पुरस्कार बदे जिलाधिकारी के संस्तुति के साथे 15 सितंबर 2026 ले आवेदन कल जा सकेला। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत। क्षमा कीजिएगा, हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुना जा सकेगा रात्रि 10 बजे। कार्यक्रम आपके लिए आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर।

रात्रि 10:23 का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात का। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर।

सुगम संगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:23 पर, और रात 8 बजे भी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:31 का। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे का, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी बात। रात 9:30 पर सुना जा सकेगा कार्यक्रम आपके लिए। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे रात 9:15 पर।

सुगम संगीत कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात 9:30 पर और रात 8 बजे। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 8:15 पर। सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:31 का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के
1: फिर राम
0: राम
1: राम आप होंगे, राम राम बोला भैया, पंचेती के डुगडुगी बजल और काका गठीले हुए भैया गठरी खोला।
0: भैया। देखा इस समय जोन बाकी काम धाम लगभग निपटी गई हम पंच भैया लोगन के जोन घर पर इस समय व्यस्तता है कि जैसे खेती किसानी वाला, लेकिन पशु लोगन के देख रेख करे में जोन बाकी आदमी जोन चैती फसल में उत्पादन करे खातिर अच्छा जोन हम लोग खेत रखले ही
1: हाँ,
0: और चौमास जोना खल जाला
1: अच्छा,
0: ओमे बदल बदल के जन बाकी अपन पशु लोगन के छानन वाहन कर रहा आदमी और बीच बीच में वो खेत के जुताई भी हो रहा है। साथ
1: अच्छा,
0: साथ जन बाकी इसमें लड़का बच्चा लोग भी जन बाकी प्रतिदिन स्कूल जात हुआ पढ़ाई लिखाई खातिर,
1: हाँ भैया,
0: चूंकि जब रोपनी लगल रहे भैया तो उसमें कभी कभार रुक जात रहा लोग की जन बाकी पशु देखे खातिर तो जब कभी लड़का खिलावे दे,
1: हाँ
0: लेकिन
1: भैया,
0: इसमें पढ़ाई में बड़ा ध्यान दिले हवन। और यहाँ तक कि जो है कि शाम के बैठ करके कुछ पंच भैया लोग जोन काम मिलल रहला बचवा लोगन के पढ़ाई लिखाई के दरमियान
1: हाँ,
0: ओके भी पूरा कराए में और खुद भी सीखे के जोन अपन नाम हम लिखे के उद्देश्य कि जो है कि हमार नाम कैसे लिखाई तो एक हमें सिखा दे जोन अभी तक अपन नाम दस्तखत नहीं लिख पावे लोग,
1: हाँ भैया,
0: ये पर भी जोन बाकी लोग जहाँ तहाँ सुनल जात हो कि ध्यान देवत हों लोग।
1: बिल्कुल सही कहा था भोला भैया। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के साक्षर होना बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी
0: बिल्कुल
1: बा,
0: बिल्कुल
1: काहे कि
0: बिल्कुल
1: भैया देखा साक्षरता ही जोन बाकी मनुष्य के भैया देखा पहचान हुए।
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: आज 8 सितंबर हुए और हर साल 8 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनावल जाला। और ये दिवस भैया देखा 17 नवंबर 1965 के यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर के यह दिवस घोषित कैल गेल रहले। और
0: हाँ
1: पहली
0: हाँ
1: बार भैया देखा 1966 में मनावल गेल रहले और 2026 में भैया देखा एकर 60वां भैया देखा वर्षगांठ के रूप में भी मनावल जाते
0: क्या
1: हुए।
0: बात है
1: और
0: क्या
1: निश्चित
0: बात
1: रूप से भैया देखा जोन बाकी एकर 2026 के थीम भी हुए
0: है।
1: लोगों पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। और निश्चित रूप से भैया देखा एकर उद्देश्य हुए कि जोन भी लोग हुए जोन भी व्यक्ति हुए उन समुदाय सामुदायिक समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करना हुए,
0: बिल्कुल
1: शिक्षा
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: मौलिक अधिकार के रूप में भैया देखा बढ़ावा देना हुए कि हर व्यक्ति भैया देखा शिक्षित होके और जानकार बने भैया।
0: निश्चित रूप से जोन बाकी यहाँ तक भी जोन बालिकाओं के साक्षरता के बात रहे तो पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की बात एक नारा भी चल रहे।
1: बिल्कुल
0: और आज जोन बाकी जहाँ लड़कन के सापेक्ष लड़कियाँ जोन बाकी बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई लिखाई भी करत हैं और जहाँ रिजल्ट आदमी आज देखल जाला
1: हाँ भैया,
0: तो लड़कियन के जोन बाकी अच्छा अंक भी हासिल होत बा और स्कूल में अगर उपस्थिति देखल जाए
1: हाँ
0: तो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई लिखाई करत हन। ऐसे में सारे लोगन के जोन बाकी ध्यान होए के चाहिए पढ़ाई पर खुद पढ़ें और अधिक से अधिक लड़का बच्चन के तो पढ़ावें। बहुत अगर आवश्यक काम ना हो
1: हाँ
0: तो हम पंच भाई लोगन के भी जोन बाकी कभी भी बच्चन के पढ़ाई में गैप नहीं करे के चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उनके जरूर स्कूल भेजें ताकि एक दिन के पढ़ल जौन दूसर का दिन अगर गैप हो गया भैया तो
1: हाँ
0: दूसरा दिन ओकर आगे वाला पाठ समझ में उनके
1: नहीं
0: ना ही
1: आया,
0: यही जौन तारतमता बनल रहला।
1: बिल्कुल
0: ऐसे जौन बाकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देवे के जरूरत है, साक्षरता के साथ साथ जौन जागरूक हो के पढ़ाई के बात है। अगर पढ़ी लिखी व्यक्ति तबे जौन बाकी अपन देश विकास कर सकला। और यही के साथ जौन बाकी आज जौन हम लोग के बीच के नखड़ू भैया हो
1: हाँ
0: रमेश कुमार यादव जी,
1: हाँ
0: जौन साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के आधारशिला है ये विषय पर बात बत कही करे खातिर हेमलता सिंह जौन सहायक अध्यापिका हवन उनके यहाँ पहुँच गई न
1: अच्छा,
0: और का कुछ बतियाइल हवन शामिल कल गिल है। अगर आपके इशारा हो तो शुरुआत कल जाए भैया
1: बिल्कुल
0: बात
1: सुनल
0: बतियाइल।
1: जा भैया।
2: श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की

0: जो केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास, अधिकारों, रोजगार और पूरे समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, जो हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं हेमलता सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय बाजनडीह, जरहा, सोनभद्र। आपका हमारे ओबरा FM रेडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों से संवाद करने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आम तौर पर हम साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता से लगाते हैं, लेकिन आज के समय में साक्षरता का वास्तविक अर्थ क्या है?
1: बिल्कुल, पारंपरिक रूप से साक्षरता का अर्थ पढ़ने और लिखने की क्षमता से था, लेकिन आज साक्षरता का अर्थ इससे कहीं व्यापक हो गया है। साक्षर वह व्यक्ति है जो केवल शब्दों को पढ़ और लिख न सके, बल्कि जानकारी को समझ सके, सही निर्णय ले सके और अपने ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सके। आज के समय में वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और कानूनी जानकारी भी व्यक्ति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साक्षर व्यक्ति को अक्षर ज्ञान देती है, जबकि वास्तविक शिक्षा उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो साक्षर व्यक्ति है वो पढ़ लिख तो लेता है, लेकिन साथ में समझना भी बहुत जरूरी होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, आखिर ये मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
1: दुनिया में लंबे समय तक बड़ी संख्या के लोग शिक्षा और बुनियादी साक्षरता से वंचित रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति और सामाजिक भागीदारी पर पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की आवश्यकता महसूस हुई कि साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानजनक और बेहतर जीवन की आधारशिला है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति सीखने और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करें। विश्व में ज्यादातर लोग जो है वो शिक्षित बनने और निरक्षरता को जड़ से मिटाने के मकसद से हर साल 8 सितंबर को पूरे विश्व में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य से साल 1966 में यूनेस्को ने हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था।
0: जाहिर है कि शिक्षा के बिना मनुष्य के सफल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा न सिर्फ मनुष्य के व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास होना संभव है। क्या आप मानती हैं कि साक्षरता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
1: हाँ, निश्चित रूप से। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का बैंक में फॉर्म भरना है, या मोबाइल पर डिजिटल भुगतान करना है, या कहीं किसी सरकारी योजना का जानकारी समझना है, तो नौकरी के लिए या आवेदन करना है, यदि वह पढ़ने लिखने में सक्षम होगा तो वह दूसरे से कम निर्भर रहेगा और अपना काम वो स्वयं कर लेगा।
0: बिल्कुल,
1: विशेष रूप से महिलाओं के लिए साक्षरता आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन सकती है। इसलिए साक्षर केवल किताबों तक सीमित विषय नहीं है, यह व्यक्ति को यह विश्वास देती है कि मैं स्वयं समझ सकता हूँ और स्वयं निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए, अब चूंकि आपने महिलाओं की बात की, आप खुद भी एक महिला हैं, तो महिला साक्षरता को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: महिला साक्षरता इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक जो शिक्षित और जागरूक महिला है, उसका प्रभाव अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रहता है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक निर्णय ले सकती है। और ऐसा नहीं कि वो परिवार में शिक्षा के जागरूकता का वातावरण बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अगर शिक्षित किया जाएगा तो वो व्यक्ति सिर्फ स्वयं को बदलता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित करते हैं तो वो पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। इसलिए महिला साक्षरता वास्तव में आने वाली पीढ़ियों में एक निवेश की तरह काम करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और चूंकि आजकल समाज में जैसा कि देखा जाता है कि ज्यादातर जो लड़के हैं उनको शिक्षा की प्राथमिकता दी जाती है, और वास्तविकता तो यही है कि जब एक बच्ची शिक्षित होती है, जब वो अपने जब उसका शादी ब्याह होता है, अपने परिवार में जाती है, तो एक परिवार को शिक्षित करती है, जबकि एक जो व्यक्ति है स्वयं ही शिक्षित हो पाता है। आज हम डिजिटल युग में हैं, मोबाइल फोन और इंटरनेट

0: इंटरनेट हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, ऐसे में डिजिटल साक्षरता कितना जरूरी है?
1: नहीं, सही कह रहे हैं। इस समय डिजिटल युग ही आ गया है। आज डिजिटल जो साक्षरता है लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पारंपरिक साक्षरता। जैसे हम अगर कहीं बाजार गए या शॉपिंग गए या हम कहीं भी कोई बैंक में गए, तो कोई भी काम हमको आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरना है या रेलवे का टिकट बुक करना है या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो हर जगह आजकल डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी हो गई है। और लेकिन डिजिटल दुनिया में क्या है कि अक्सर लोग जोखिम भी खा जाते हैं।
0: अवसर
1: जैसे
0: तो है लेकिन साथ में
1: जोखिम भी है,
0: बिल्कुल।
1: जैसे फर्जी संदेश आजकल आज इतना मोबाइल पे इतना हो रहा है, साइबर ठगी हो जा रही है, गलत सूचना लोगों को मोबाइल पे, कभी कभी जो न्यूज हुई नहीं रहती फिर भी वो मोबाइल पर फैल जाती है,
0: और लोग उस पर विश्वास कर लेते
1: विश्वास
0: हैं।
1: भी कर लेते हैं। और ऑनलाइन धोखाधड़ी भी आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए लोगों को डिजिटल साक्षर होने का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं होता है, इसका अर्थ है कि जानकारी को पहचानना, सही और गलत सूचना का फर्क करना कि वो जानकारी सही है या गलत है,
0: बिल्कुल।
1: और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित भी रखना चाहिए। हमें अपना कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पे उसे नहीं डालना चाहिए, पोस्ट नहीं करना चाहिए, और डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: आज के समय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि वह डिजिटल तकनीक का उपयोग करना नहीं जानता।
0: बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात करें तो आज साक्षरता के क्षेत्र में आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है?
1: मुझे तो यही लगता है मेरे विचार से कि चुनौती केवल लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने की नहीं है, बल्कि सीखी हुई चीजों को जीवन में उपयोग करना और उसका और वो आगे लगातार सीखते रहना है।
0: बिल्कुल।
1: इसके अलावा आर्थिक परिस्थितियाँ, शिक्षा तक पहुँच, डिजिटल असमानता और कुछ सामाजिक कारण भी हैं जो चुनौतियाँ पैदा करते हैं। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक वातावरण बनाना होगा जहाँ की व्यक्ति उम्र की परवाह किए बिना और हर चीज को अपने आप सीख सके, क्योंकि सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों के मन में यह मानसिकता रहती है, सोच रहती है कि अब तो उम्र हो चुकी है, अब सीखने का क्या मतलब है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी भी उम्र में व्यक्ति सीख सकता है, अपनी जानकारी बढ़ा सकता है और वो उसके हित में ही होगा। अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: मेरा संदेश तो बहुत सरल है कि आप लोग पढ़े लिखें और दूसरे को भी अवसर दें, और जो भी जानकारी आपके पास है उसे अपने तक सीमित न रखें, उसे हर एक व्यक्ति जिसे उस समय उसकी उस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है उसकी मदद करें, और अपने बच्चों को केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि सोचने, प्रश्न पूछने और सही निर्णय लेने के लिए शिक्षित करें, और डिजिटल दुनिया में हमेशा सतर्क रहें। और ये बात अपने आप बच्चों को भी बताइए कि ऑनलाइन जानकारी सही नहीं होती है, हर लिंक सुरक्षित नहीं होता है, और याद रखिए कि साक्षरता केवल अक्षरों की पहचान नहीं बल्कि अवसरों का भी पहचान है।
0: बहुत सुंदर संदेश। आज की बातचीत से यह तो स्पष्ट है कि साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता नहीं है, यह व्यक्ति को आत्मविश्वास, अवसर, अधिकारों की समझ और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। और आज के डिजिटल युग में हमें पारंपरिक साक्षरता के साथ साथ डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक रूप से जागरूक भी बनना होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आइए हम एक छोटा सा संकल्प लें, हम स्वयं सीखेंगे, दूसरों को सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने आसपास ज्ञान एवं जागरूकता का वातावरण बनाएंगे, क्योंकि एक साक्षर व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है और एक साक्षर समाज देश का भविष्य बदलता है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमलता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: बोला भैया,
3: देखिए
2: कितना बढ़िया जानकारी। साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन की आधारशिला है।
3: हाँ,
2: बारे में हेमलता सिंह जो उनकी सहायक अध्यापिका रहलिन और रमेश भैया से भरपूर जो बाकी बातचीत के माध्यम से जानकारी मिलल।
3: बिल्कुल,
2: और
3: बिल्कुल।
2: हम तो कहब कि भैया देखा एक ठो मन फेर अपन राम दुलारी बहन के करावा और सुनल जा भैया।
3: सुनवा भैया।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: मुराव भाई।
2: हाँ बोला भैया।
1: देखा कितना बढ़िया संदेश के माध्यम से मिलेट जो अन्न की बात चला था ओके बारे में भी जानकारी हम लोग सुनल गए। निश्चित रूप से अगर मोटे अनाज के हम लोग जो बाकी सेवन कल जाए
2: हाँ भैया
1: तो जे तरीके इस समय अगर महंगा कीमत मिल रहा है
2: हाँ भैया
1: तो उसे अच्छा मुनाफा भी हम लोग कर सकेला और साथ साथ खान पान के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग जो बाकी अच्छा अपन स्वास्थ्य लाभ ले सकेला।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बात रहा कि सब के उत्पादन करे खातिर चाहे बागवानी के उत्पादन करे खातिर ये समय जौन बाकी जो सरकार के मिशन जौन हो बागवानी के खातिर और तमाम तरह के उत्पादकता के बारे में तो एक एक खातिर जौन बाकी उत्तर प्रदेश में बागवानी के विकास और किसानन के अधिक मुनाफा दिलावे खातिर एकीकृत बागवानी विकास मिशन चलावल जा रहा है।
2: अच्छा
1: जौन ई योजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से काम करला। एमे किसानन के विभिन्न बागवानी

0: गतिविधियन पर सीधा अनुदान भी मिला भैया।
1: अच्छा।
0: अब अगर हमें जोन बाकी लाभ मिले की अगर बात हम लोग की जाए तो बाग के घेराबंदी पर भी जोन बाकी लाभ हो,
1: बिल्कुल
0: किसानन के अपन फसलन के बाग के सुरक्षा के खातिर घेराबंदी पर 50% के तक के जोन बाकी सब्सिडी जोन बा मिला भैया।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और ओकरे साथ साथ भैया देखा जो हम लोग पारंपरिक खेती करत है
0: हाँ
1: ओकरा
0: हाँ
1: से भैया देखा हट करके बागवानी जैसे फल सब्जी फूल और मसाले की खेती अपनावे खातिर
0: बिल्कुल
1: 35% से लेकर 75% तक के अनुदान दिहल जाते हुए
0: बिल्कुल
1: और जोन भी किसान भैया लोगन हुए न इस सुविधा जोन बाकी पावे खातिर उनके जोन बाकी संरक्षित खेती जैसे हो गई। संरक्षित खेती के मतलब भैया देखा हाईटेक खेती या बेमौसमी सब्जियां उगावे खातिर पाली हाउस या ग्रीन हाउस के निर्माण के लागत पर 50% तक के अनुदान दिहल जाते हुए और
0: क्या
1: ओकरे
0: बात
1: साथ साथ भैया देखा बागवानी में जैसे अमरूद की खेती अगर हम लोगन करे चाहते हैं तो किसान भैया लोगन के 1,20,000 के जोन बाकी अनुदान मिली और ओकरे साथ साथ जोन बाकी जोन आम के खेती करे चाहते हुए उनका 80,000 रुपया के जोन बाकी अनुदान मिली और
0: बिल्कुल
1: ओकरे साथ
0: बिल्कुल
1: साथ जोन फूल के खेती करे चाहते हुए भैया ओकरे भैया देखा जोन बाकी 10,000 से 60,000 रुपया
0: 60,000
1: प्रति
0: बिल्कुल
1: हेक्टेयर के भैया देखा अनुदान दिहल जाते हुए और जोन लोगन भैया देखा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुए भैया कि
0: भैया
1: जोन लोगन भैया देखा जोन बाकी हाईब्रिड सब्जियां बीज के खेती करे चाहते हुए उनके भैया देखा राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत करेला लौकी शिमला मिर्च आलू और संकर बीज और उर्वरक पर 35% तक के भैया देखा अनुदान देवे के व्यवस्था
0: बिल्कुल
1: भैया हो
0: बहुत
1: गए।
0: बढ़िया प्रबंध और सिंचाई और तकनीक के बारे में भी जोन बाकी बहुत कुछ अनुदान मिल रहा है, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के में भी जोन बाकी छूट है, पाली हाउस ग्रीन हाउस शेडनेस लगावे खातिर भी विशेष सहायता राशि देवल जाला भैया।
1: बिल्कुल। और जोन भी लोग एकर सुविधा लेवे चाहते हो उनके जोन बाकी उत्तर प्रदेश के निवासी होके के चाहिए और ओकरे साथ साथ जोन बाकी अस्थायी निवासी भी है
0: बिल्कुल
1: और ओकरे
0: बिल्कुल
1: साथ साथ भी देखा उनकर आयु 18 वर्ष से अधिक होके के चाहिए और उनकर जोन बाकी स्वयं के जमीन होके के चाहिए या 10 साल के लीज पर अगर जमीन ले ले हुए तो उनके इस सुविधा के लाभ मिले। लाभ खातिर भी देखा आधार कार्ड जमीन के खतौनी बैंक पासबुक और फोटो और मोबाइल नंबर होके के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जोन भी
0: भैया
1: लोग इस सुविधा के लाभ देवे चाहते हुए
0: हाँ हाँ हाँ
1: ऑनलाइन
0: हाँ
1: भी देखा आवेदन कर सकल भैया।
0: और अन्य गतिविधि भी जैसे मशरूम उत्पादन के लिए चाहिए वो में मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन करके चाहिए वो में भी मसाला संबंधित जितना भी खेती करत हुए करल चाहिए ओके ऊपर भी अनुदान हो। निश्चित रूप से इतना अच्छा काम हो ते हमें जोन बाकी बढ़ चढ़ के हम लोग के समय के साथ एक लाभ लेवे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: बात पर बत कही भैया बहुत बढ़िया हो अभी आगे भी चलत रही,
1: हाँ भैया
0: लेकिन अब हम लोग की खेती किसानी करे खातिर हम लोग का कुछ सावधानी बरतें, कुछ आज ये समय के मौसम की भी जानकारी हम लोग ले लो जाए
1: एकदम भैया
0: तो मौसम के जानकारी खातिर जोन बाकी हम लोग बीच बीच में कुछ न कुछ हम लोग के आवत रहला
1: हाँ
0: कि कुछ तो साग सब्जी भी हम लोग लेवल जाला और कुछ जोन बाकी विशेषज्ञ लोगों के भी जानकारी के माध्यम से हम लोग जानल जाला।
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: समय जोन बाकी डॉक्टर शिव मंगल सिंह जोन मौसम वैज्ञानिक हों BHU के
1: हाँ
0: आपसे मौसम के जानकारी कुछ हम लोग मिलत बहान
1: बिल्कुल
0: और आपके बताएं कि ये आप जोन बाकी तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्राम कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विज्ञान BHU वाराणसी से हों,
1: अच्छा।
0: आपके का कुछ जानकारी देवल चाहत हों किसान भाई लोगन के खातिर, तो
1: एकदम
0: भैया
1: समझ
0: सुन
1: गए।
0: लेवल जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले अगले 3-4 दिनों की बात कर लें तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से कहीं कहीं उमस भरी गर्मी, तेज धूप, बीच में कुछ स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम बरसात भी हुई है और आने वाले दिनों की बात कर लें तो अगले 3-4 दिनों में भी उमस भरी गर्मी और तेज धूप के बीच कुछ स्थानों पर जो है हल्की बरसात होने की संभावना है। ऐसे मौसम में फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसान भाई क्या करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में हम धान की जो फसल है अभी उसमें क्या है कि बालियां बनना शुरू हो गई हैं जिसको कि पैनिकल इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं और इस अवस्था में क्या होता है कि अगर हल्की वर्षा हो रही है तो वो लाभदायक हो सकती है क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है और बालियां बनने में मदद मिलती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर कुछ स्थानों पर लंबे समय तक पानी रुका हुआ है खेत में और भारी बारिश हुई हो रही है तेज हवा के साथ, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इस अवस्था में क्या करें किसान भाई, कि खरपतवार नियंत्रण और पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। बारिश के बाद अगर कीट और रोगों की लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी नियमित निगरानी करते रहें और उचित उपाय उसके अपनाएं। और अगर हम बात करें सब्जी वाली फसल की, जैसे भिंडी हो गया, कद्दू वर्गी फसलें हो गई, भी ये सब क्या है कि इसमें फलन की अवस्था में है, तो हल्की वर्षा हो रही है, तो नुकसान से बचने के लिए किसान भाई क्या करें कि समय से जो है तुड़ाई करके बाजार में भेज के सही से उसका दाम प्राप्त कर लें, और साथ ही पत्तियों और फलों पर रोग कीट दिखे तो नियमित निगरानी रखें और उचित दवा का प्रयोग करके उसको कंट्रोल करने का उपाय अपनाएं। इसी क्रम में अगर हम किसान भाई बात करें पशुओं के लिए, तो इस समय क्या है कि उमस भरी गर्मी है, धूप है और हल्का फुल्का बारिश भी है, तो इससे क्या होता है कि पशुओं के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नियमित टीकाकरण कराएं, स्वास्थ्य जांच कराएं और समय पर जो है उनको ये विशेष ध्यान दें कि इस समय चूंकि बारिश हो जा रही है, चारा भीग जाएगा, अगर उसको तुरंत खिला देंगे तो पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो है आप मौसम को ध्यान में रख के ही कार्य करेंगे तो आप लोगों को जो है निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
0: मुराव भाई, देखा जो अभी मौसम वैज्ञानिक के हम लोग मौसम के बारे में जानकारी करते रहे,
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर शिव मंगल सिंह के भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: एकदम भैया,
0: और यही लगले हम लोग तो चाहब कि किसानन के लिए आय के उभरता नया स्रोत का कुछ है बागवानी के बारे में। मानसिंह से सुनील कुमार तिवारी भैया की बात बत कही है, सुन लो जब।
1: एकदम सुना जाए भैया। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी का बात हम लोग करीला, बाड़ी यानी बागवानी बगीचा का, और खास तौर से अपन किसान भैया लोग लगातार अपने अंचल में धान गेहूं मिर्च टमाटर यही का खेती कराना, ऐसे कहीं न कहीं माने जौन रासायनिक दवा रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग होता, कहीं न कहीं ओकर नुकसान भी अपने किसान भैया लोगन के उठावे के पड़ता। ऐसे अब अपन सरकार भी ये कहतिया कि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाए का अपन किसान भैया लोग बागवानी तालाब पशुपालन मुर्गी पालन बकरी पालन भेड़ पालन से मछली पालन से जुड़े। आज एक प्रगतिशील किसान मान सिंह भैया रावर्ट्सगंज ब्लॉक के कुसी डौर से अपने कार्यक्रम किसानवाणी में आल हुआ। आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा
2: धन्यवाद भैया।
1: मान सिंह भैया। अपन किसान भैया लोग खास तौर से आपके अंचल में मिर्च और टमाटर का बड़े पैमाने पर खेती होल, लेकिन मिर्च और टमाटर से हट का अगर कम खर्च में अधिक आमदनी अपन किसान भैया लोग लेवल चाहता तो का कह सकना।
2: किसान अपने खेती के साथ, सब्जी के खेती के साथ बागवानी एक ऐसा चीज बा जिसमें आप पूरा मतलब आप कम पैसा में ज्यादा लाभ ले सकलें।
1: अच्छा आप बागवानी से जुड़त हो मान सिंह भैया।
2: हम 2021 से अपने यहाँ मदर प्लांट कहलें, तो हमारा पहला बगीचा 2021 में लगल रहल,
1: जी
2: और जोने से इसमें हम प्रोडक्शन बा।
1: अच्छा
2: अब प्रोडक्शन में जैसे इस टाइम हमारे पास ड्रैगन फ्रूट और मौसम्मी का और अमरूद है,
1: जी
2: इसमें प्रोडक्शन में है। और अभी जैसे हम उसके साथ साथ हम कुछ पपीता भी लगाते हैं,
1: अच्छा
2: हाँ पपीता भी लगाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन हमें लगता है कि अक्टूबर में वो भी मार्केट में जाने लगेगा।
1: बाजार में माने जाए
2: हाँ
1: लगी।
2: बाजार में जाने लगेगा।
1: जौन बारी बगीचा में खाली जगह रहल है उनमें का करना।
2: अब उसमें आप समझ लीजिए कि हम कुछ इलाके में जैसे जो आम का बगीचा हमारा है उसमें हमने हल्दी लगाया है,
1: अच्छा
2: और बाकी जो ड्रैगन है उसमें हमने पपीता और सूरन लगाया है।
1: अच्छा तो अच्छा ड्रैगन पर कोनो ओकर दुष्प्रभाव
2: वो
1: नहीं न पड़े।
2: एकदम नहीं दुष्प्र एक भी परसेंट दुष्प्रसार इसलिए नहीं है
1: हाँ।
2: क्योंकि वो ड्रैगन एक ऐसा जो डायरेक्ट सनलाइट मतलब डायरेक्ट धूप के पड़ी
1: जी
2: तो
1: जी
2: स्पॉट आना, स्पॉट की
1: हाँ।
2: समस्या में आ जाएगी।
1: अच्छा
2: तो वो डबल जैसे अभी आप समझें कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ठंडी बढ़िया है अच्छी है,
1: जी
2: जैसे ही जनवरी फरवरी जनवरी में ठंडी अधिकतम ठंडी आ जाएगी तो उस टाइम में अगर छाँव या उस टाइप का ना हो तो फिर वो स्पॉट आवा शुरू हो जाएगी।
1: अच्छा
2: और फिर आपका उधर चल के अगर आप जैसे हम लोग बागवानी में ड्रैगन में खासकर फिर मक्का लगाई
1: जी
2: तो मक्के में ये होता है कि मक्के में जो उसका हाइट मक्के का करीब 4 से 5 फीट हो जाए, तो वो एक कवर के रूप में जो लू चली मई और जून वाला लू
3: जी
2: वो
3: जी
2: कवर करके बचा ली, और उससे फिर मक्का के इसमें रेट भी बढ़िया रहा,
3: बिल्कुल सही
2: इनकम
3: बात
2: भी
3: कहते
2: ऊपर मिल
3: हो।
2: जाला। अच्छा
3: अच्छा

0: मान सिंह भैया, आप बागवानी अपने यहाँ भी कैले हों, एक पौधशाला भी आप
1: हाँ इस
0: स्थापित करत
1: साल,
0: हों।
1: हाँ इस साल अपने यहाँ सरकार का एक योजना चला
0: जी
1: जोन में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर जो अपन हो
0: जी जी
1: वहाँ से सब्सिडी मिला के हो। आप मानक पूरा कर ली हैं तो गवर्नमेंट का ठीक ठाक सब्सिडी है, तो इसमें आपके पास अनुभव प्लस मदर प्लांट का जो भी उनके उनकर हो, आप खेत अपन खुद का होएक चाहिए, तालाब होएक चाहिए,
0: जी जी
1: बोर होएक चाहिए अपन, भाई आप पौधा लगाई हैं तो सिंचाई बदे, और बाकी रास्ता रास्ते पे है तो भाई क्योंकि आप कमर्शियल जब करिए तो आपका भाई रोड पे हो एक सही जमीन
0: जी जी
1: तो है, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है इसमें।
0: अच्छा, ये जो पौधशाला आप स्थापित करत हो मानसिंह भैया, एकरे बदे का करे के पड़ाला?
1: इसके लिए तो आपको सबसे पहले उद्यान विभाग से संपर्क करके
0: जी
1: एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका होता है वो आपको सबमिट करना होगा,
0: जी
1: उसमें बैंक में एक छोटा सा चालान होता है वो बैंक उद्यान विभाग वाले बता देंगे, और डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार पासबुक खतौनी फोटो,
0: जी
1: और जो जहाँ पे आप बना रहे हैं अपना पौधशाला उसका एक नजरी नक्शा
0: अच्छा
1: और मिट्टी का जांच का वो प्रमाण पत्र चाहिए, और आपके यहाँ इरिगेशन की व्यवस्था प्रॉपर हो जैसे जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: माने पानी को उचित व्यवस्था
1: उचित
0: भी
1: व्यवस्था
0: हो
1: आपके
0: एक
1: पास होएक
0: चाहिए।
1: चाहिए। हाँ
0: पौधशाला आप स्थापित कर दिले हम,
1: हाँ हाँ अपने आप स्थापना होगा पौधशाला का।
0: तो उनमें कौन कौन पौधा ले आलमा?
1: अभी जैसे कि नॉर्मल पौधा में आम के वैरायटी ली है तो मैं जैसे लंगड़ा चौसा दशहरी आम्रपाली जो भी अपन नॉर्मल वैरायटी, कुछ वैरायटी हम करीब 38 प्रकार का आम लिया लिया अभी पहला
0: जी
1: जो
0: जी
1: खेप
0: जी
1: हमारा हो, तो मैं जैसे पॉपुलर वैरायटी में बा मियाँ जाकी, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरिडीमा, अंबिका और केसर है, टॉम एक विदेशी वैरायटी है टॉमी अटकिंस, और जामुन है जैसे जामुन है सीडलेस और 10 kg है, और कुछ कटहल की वैरायटियां हैं जो लाल होती हैं रेड,
0: अच्छा
1: और एक कटहल की वैरायटी है जिसमें कटहल के अंदर बीज नहीं होगा, और कुछ अपने शो प्लांट हैं जो
0: जी
1: अच्छे, नारियल का पौधा है जो अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा, और कुछ बांस की प्रजातियां हैं
0: अच्छा
1: जो अपने यहाँ बांस वाली प्रजातियां काफी सर्वाइव अच्छी कर रही हैं।
0: अच्छा जौन आम का पेड़ बा या कटहल बा जामुन बा, अपने आबो हवा में वो प्रफुल्लित होई
1: हाँ
0: लग
1: बहुत,
0: जाए?
1: अरे बता तो रहे हैं कि 2021 में अपने यहाँ मदर प्लांट सबका लगल रहा तो सारे मदर प्लांट में प्रोडक्शन है एक भी
0: अच्छा
1: है। हाँ हमारे यहाँ जैसे मौसम्बी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसमें, मौसम्बी मान चौथे साल में एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो कुंटल करीब प्रोडक्शन है एक एक पौधे में।
0: अच्छा
1: हाँ बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन।
0: अच्छा मान सिंह भैया, जैसे आप पौधशाला स्थापित कैले हों, और कोनो किसान भाई आप लोगों के यहाँ पौध लेवे बदे जाइ हैं, तो उनके का माने मूल्य देवे के पड़ी वो पौध का?
1: हाँ पौध का मूल्य जो वैरायटी के हिसाब से मूल्य हो,
0: अच्छा।
1: हाँ जो वैरायटी जैसे हैं जैसे आप भाई 50 रुपये 80 रुपये जैसे अभी जो वैरायटी का रेट हो कॉमन एक मिनिमाइज ही रेट है, बहुत रेट नहीं हो, और यही हो कि वैरायटी जो भी हम लोग लिया ले भाई अपने आप ही, ग्राफ्टिंग का जो थोड़ा कम है आइडिया जैसे कुछ
0: जी
1: चीज़ें
0: जी
1: हम लोग सब्जी का भी कर रहे हैं अपने खुद से, और बाकी जो चीज़ें हैं अभी हम लोग बाहर से ही ले रहे हैं जो अच्छी नर्सरियाँ जैसे आपका जो भी IIVR से सर्टिफाइड नर्सरियाँ हैं उन्हीं से हम लोग पौधा ले रहे हैं अभी।
0: तो कहाँ कहाँ से पौधा ले
1: जैसे
0: आल
1: अपने
0: वहाँ?
1: आम की जो ज़्यादातर वरायटियाँ हैं वो आई हैं काकोरी
0: जी
1: मलिहाबाद जिसका जहाँ पर अपना IIVR है, और कुछ जामुन उमुन की वरायटियाँ कुछ कलकत्ता से आई हैं,
0: अच्छा
1: और मौसम्मी की वरायटियाँ सारी MP से आई हैं जो नींबू जिसमें है सीडलेस नींबू हो गया या जनरल नींबू, बाकी लोकल से कुछ है, कुछ एक हमारे यहाँ एक जौनपुर में अच्छी नर्सरी अपने सरकार के माध्यम से ही खुली है, कुछ पौधा उनके यहाँ से भी हमने लाया है।
0: अच्छा, जो नर्सरी आप अपने यहाँ स्थापित कैले मान सिंह भैया, तो उनमें ओकर व्यवस्था ओकर देखभाल आप कैसे कराना?
1: अपने यहाँ जैसे प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन हो
0: जी
1: तो जो मदर प्लांट हैं सब ड्रिप पे हैं, बाकी जो हम पौधा जैसे अपन जो पौधा जो नर्सरी में जो पौधा बाहर से लिया इला वो कभी इरिगेशन के व्यवस्था में स्प्रिंकलर हो,
0: अच्छा
1: स्प्रिंकलर हो सेड हो अपने पास नेट हाउस में हो सकते हैं ज़्यादातर,
0: जी
1: बाकी पानी का अपना प्रॉपर व्यवस्था है,
0: जी
1: अब जो भी है खाद उद का जो थोड़ा मैनेजमेंट तो सारे पौधे सही हैं।
0: अच्छा मान सिंह भैया, आप स्वयं अपन बागवानी भी लगौले हों, और अपन अंचल जौन बा खास तौर से पेड़ पौधा बदे या बागवानी बदे कैसन बा?
1: नहीं बहुत है अच्छा यहाँ पे, जैसे अपन एक अपना इलाका जो पहाड़ पठारी वाला इलाका
0: जी
1: है
0: जी
1: तो जैसे अभी हमारे यहाँ उद्यान विभाग वालों ने एक कैक्टस लाया है, एक कैक्टस प्रजाति जो उसको पांच जैसे वो 5 प्रकार से यूज होगा,
0: अच्छा
1: जैसे उसको आप खा भी सकते हैं चारे में भी उपयोग करेंगे उसका, और उसका कपड़ा भी बनेगा
0: अच्छा
1: और दो तीन है उसका, और उसका उपयोग है।

0: रोग है एकदम पूरा वो है, तो बागवानी एक ऐसा चीज है कि जिसमें आपको दवा और मेहनत बहुत कम है और एक बार में ही आपको मोटा पैसा देगा।
1: बिल्कुल।
0: इसमें बागवानी में हम चाहेंगे कि बागवानी लोग करें जितना में है, जो अपना निकाल लें जो एरिया उनका बच रहा है, क्योंकि पौधा बहुत जरूरी, पौधा ऐसे भी लगाना बड़ी बहुत आवश्यकता है, तो बागवानी लगाएं, पैसा भी मिलेगा और प्रकृति के साथ संतुलन भी बना रहेगा।
1: बिल्कुल। अगर अपने पर्यावरण के स्वच्छ रखल चाहत हुआ, सुंदर बनाए कर रखल चाहत हुआ, और शरीर के स्वस्थ और निरोग रखल चाहत हुआ, तो अपन किसान भाई लोग जरूर बागवानी से जुड़ें, उनके उचित फायदा प्राप्त हुई। आज मान सिंह भैया आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपने अनुभव को जौन बात रहल हा अपने किसान भाई लोगों साथे बटलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मुराओ भाई, हम लोग के तरफ से भी मान सिंह के और सुनील तिवारी भैया के बहुत बहुत धन्यवाद है,
1: धन्यवाद हुए
2: इतना
1: भैया,
2: इतना बढ़िया जानकारी दिलावे खातिर और देवे खातिर।
1: एकदम
2: और
1: भैया,
2: निश्चित रूप से ये सब जितना भी हम लोग खेती किसानी करीला, उसमें अगर हम लोग के मुनाफा के बात जहाँ वाला
1: हाँ
2: तुरंत बाजार तरफ हम लोग की दृष्टि जाला भैया।
1: बिल्कुल। और बाजार के बात आवला तो भैया देखा, आज हम लोगन के बाबूलाल मौर्या भैया रावर्ट्सगंज के बाजार भाव भेजले हुए,
2: अच्छा अच्छा
1: और
2: भैया,
1: कुंतल में हुए भैया आलू
2: पाँच है
1: 1000 से 1200 रुपया कुंतल, प्याज 4000 से 4500 रुपया कुंतल, लहसुन 1200 से 1400 रुपया कुंतल, टमाटर 2200 से 2500 रुपया, हरा मिर्च 2500 से 3000 रुपया कुंतल, हरा धनिया 10000 से 11000, लौकी 2200 से 2500, करेला 3500 से 3800 रुपया कुंतल, नेनुआ 2800 से 3000, भिंडी रहले 2200 से 2500 रुपया कुंतल, मोड़ा 2800 से 3000, अदरक रहले 7000 से 8000 रुपया कुंतल, मूली 2500 से 3000, पालक 3200 से 3500 रुपया कुंतल, परवल 7000 से 8000, कोहड़ी रहले 1200 से 1500 रुपया कुंतल, मक्का 1000 से 1200, खीरा 3000 से 3200 रुपया, बैगन 2800 से 3000, पत्ता गोभी 2200 से 2500 रुपया सैकड़ा, फूल गोभी 2500 से 3000,
2: अच्छा
1: और
2: अच्छा
1: नींबू
2: भैया,
1: रहले 600 से 700 रुपया प्रति सैकड़ा।
2: भैया देखा बाबूलाल मोर भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद है,
1: बिल्कुल
2: और यही के साथ की जोन बाकी इतना पौष्टिक साग सब्जी उत्पादन करल ना आप, और जोन बाकी एक ही अगर आहार के रूप में लेवे लड़का बच्चा लोग चाहे बड़ बुजुर्ग कोई भी, तो निश्चित रूप से ये सब जोन बाकी कुपोषण से रहित हुई हैं,
1: बिल्कुल
2: कुपोषण से बची हैं भैया। तो ये हम तो ये कहल चाहब कि जोन बाकी अगर बच्चा लोगन के स्वस्थ रखे के हो, कुपोषण से बचावे के हो, तो जोन बाकी स्वच्छ जैविक खाद से उत्पादित जोन बाकी साग सब्जी हो ओकर सेवन कराएं, भरपूर जोन बाकी दूध के सेवन कराएं, दूध खातिर पशुपालन बहुत जरूरी हो भैया,
1: बिल्कुल
2: और उससे जोन बाकी गोबर जोन प्राप्त तो हुई उससे जोन बाकी हम लोग के साग सब्जी उत्पादन हुई बिल्कुल पौष्टिक रही, स्वस्थ शरीर रही, स्वस्थ शरीर रही तो भैया स्वस्थ मन रही,
1: एकदम
2: तब जोन
1: भैया,
2: बाकी अच्छा से जोन बाकी पढ़ लिख करके साक्षर भी हुई हैं सर
1: एकदम
2: और आगे बढ़ी हैं भैया।
1: बिल्कुल सही कहा तो भोला भैया, निश्चित रूप से भैया देखा संतुलित आहार ही भैया देखा मन मस्तिष्क शरीर और दिमाग के विकास के अच्छा जोन बाकी कारगर
2: द्योतक
1: उपाय
2: हो,
1: हुए,
2: हाँ बिल्कुल
1: और निश्चित रूप से भैया देखा हर संभव हम लोगन के प्रयास करे के चाहिए कि हम लोगन के लेकिन बचपन के संतुलित आहार मिले और उनकर जोन बाकी शरीर के साथ मस्तिष्क और हर चीज के विकास हो,
2: बिल्कुल
1: ताकि
2: बिल्कुल,
1: अच्छा भैया देखा कर सके और आगे बढ़ सके।
2: और नित्य प्रति व्यायाम भी साथ साथ हो भैया, जाने से जो कुपोषित जो भी लोग हो तो उसे बड़ा निजाकत मिलला, कभी कभार दिव्यांगता भी बहुत सामान्य हो जाला भैया, तो
1: बिल्कुल
2: ऐसे जोन बाकी है पर हम लोग के ध्यान देवे के चाहिए, घड़ी के सुई इशारा करता कि हम लोग के पंचायती यहीं समेटे के चाहिए, तो का इशारा बा भैया,
1: एकदम भैया, चलल जाए सब पंचन के
2: राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

0: देखो अगर बात की जाए अपनी खेती पाती के, तो हमें रुपया पैसा की जरूरत बीच बीच में पड़ा करत है। अगर अपने पास में पैसा नहीं रहा था तो ये लागत है के आगे जाए के हाथ फैलावा जाए।
1: भैया हाथ फैलाव जरूरत ना है, खेती में अपन बीज खाद ये सब लावे है ना,
0: हाँ
1: अभी
0: हाँ
1: आसान होगा है। और यह मक काम आवत है अपन किसान क्रेडिट कार्ड, यू सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही योजना है भैया, वह मां बना थे एक ठू कार्ड। अगर हम भैया वो कार्ड बनवा लेते हैं ना, तो हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और वही के माध्यम से भैया हम अपने जो बैंक है वह से ले लेते हैं कर्जा, और जब फसल हो जाए तो बेचो और समय से कर्जा चुकाओ भैया।
0: हम पंच जोन सर द्वारा हाथ फैलाई थे, कभो कभो ऐसा हुआ था कि समय पे कर्जा भी नहीं मिल पावत है, और जोन मिलता है का जोन ब्याज रहा था इतना ज्यादा रहा था कि जितना हम पंच ले नहीं ना उससे ज्यादा अदा करे पड़ जाता है। मूल ई योजना जब से चली है तब से जो है बहुत कम ब्याज दर पर हम पंचन का इसे कर्जा मिल जाता है। जब भी हमें जरूरत हुए कर्जा ले लीन जाए और अपन फसल बेच के जो है ओके समय पे हम पंच अदायगी जब कर दी थे तो अपन जो अतिरिक्त जो पैसा जाते है वो बहुत कम जाते है।
1: और देखो अगर हम सबका जानकारी रहता है ना, तो यू खेती कर्म बहुत आसान हो जाता है। तो जान लीन जाए आज के खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने कुल 286 करोड़ 46 लाख रुपए की कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई परियोजनाओं के लिए 185 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 101 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के तहत सरकारी कृषि केंद्रों का आधुनिकीकरण, उन्नत कृषि यंत्र, सिंचाई नलकूप और जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अलावा मृदा परीक्षण और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, कृषि यंत्रीकरण और प्रशिक्षण, औद्यानिक विकास, मत्स्य बीज उत्पादन और बीज भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और स्वीकृत धनराशि का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना है।
0: सरला बहनी,
1: हाँ राज भैया,
0: देखो ये जो ना अपन खरीफ की फसलें चल रही हैं तो इमा हम पंच मक्का का भी खेती कर रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भैया, आपका
0: हाँ।
1: देखभाल भी बहुत जरूरी है।
0: तो कहे ना आज की बातें सुन ली।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ मक्का आपके खेत में है तो इस समय सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत सिंह यादव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां खरीफ मक्के की फसल खेत में है तो इस समय सामयिक देखभाल में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो खेत में आपकी फसल खड़ी हुई है तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक हुई है और जिसके कारण से जलभराव हुआ है तो सर्वप्रथम वहां पर जो अतिरिक्त जल है उसको निकाल दिया जाए। इसके अलावा यदि समय से बोई गई फसल है तो वहां पर खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग करना है, जिसमें एक एकड़ में लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 33 किलोग्राम यूरिया एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास नैनो यूरिया उपलब्ध है तो उसके लिए एक बोतल 250 ml की एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जहां देर से मक्के की फसल बोई गई है तो वहां पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
4: अगर घुटने तक उसकी हाइट हो रही है तो वहां पर नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त है एक एकड़ के लिए। यदि उनकी लंबी अवधि की फसल है, कम अवधि की फसल है तो वहां पर वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, क्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है?
4: अगर खेत की तैयारी के समय जिंक का उपयोग कर दिया गया है बेसल ड्रेस के रूप में तो आवश्यकता नहीं है। अगर कमी है और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कत्थई रंग के धब्बे पौधों पर तो उसके लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए 2.5% का घोल बना करके छिड़क दे। उतनी मात्रा में आप भुजा हुआ चूना ले लें और दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। जनरली 150 लीटर से लेकर के 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
3: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं तो खरपतवारों का प्रबंध

0: कैसे हो खरीफ मक्के में?
1: इसके लिए चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार दोनों ही उगते हैं। तो यदि आपने उस समय खेत की बुआई के बाद आपने अगर पेंडीमेथिलिन का प्रयोग कर दिया है और समय से बुआई की हुई है, तो अब जो अवस्था है उस अवस्था में आप एक निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं।
0: जी
1: और यदि आपने देर से बोया है तो उस अवस्था में, मतलब अगर 25 से 30 दिन की आपकी फसल है, तो वहां पर टोपरा मेजोन या टेम्बोट्राइन जो रसायन है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है खरपतवार को नियंत्रण के लिए।
0: और इसका प्रयोग 20 से 30 दिन की अवस्था पर ही कर सकते
1: जी
0: हैं। डॉक्टर साहब, क्या मिट्टी चढ़ाना भी फायदेमंद होगा?
1: जी हाँ बिल्कुल। मिट्टी चढ़ाने से आपकी जो वर्षा का पानी है वो जड़ों में नहीं लगता है, और हवा तेज चलती है उससे गिरने से बचाव के लिए भी मिट्टी चढ़ाना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और उसके लिए मिट्टी पड़ने वाले हल से जो है आप जुताई करके उसको, तो उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी फसल के ऊपर।
0: डॉक्टर साहब, इस समय फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई तरह के हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप इस समय हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, बीमारियां कौन कौन सी हैं?
1: मक्का में प्रमुख रूप से तुलसीता रोग, गुलाबी उकठा रोग और पत्तियों का झुलसा रोग प्रमुख है। इससे सावधानी के लिए सर्वप्रथम तो आप जब प्रयोग कर रहे थे बीज का, तो हमको उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो रोग प्रतिरोधी हो। यदि किसी के कारण से नहीं कर पाए हैं, बीजों की उपलब्धता नहीं हुई है, तो इस अवस्था में अगर आपके फसल पर रोग का प्रकोप दिख रहा है, तो डाइफेन Z78 या जीने की 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। यदि बीमारी का प्रकोप हर वर्ष हो रहा है, तो इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए।
0: और
1: गुलाबी उकठा के लिए बाविस्टिन या कैप्टन के अलावा, जैसे वैलिडीमाइसिन जो दवा है, 2.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए हरी फसल
0: अच्छा,
1: में।
0: वेलिडा माइसिन।
1: जी हाँ,
0: डॉक्टर साहब, जहां पत्तियों का झुलसा रोग आता है वहां
1: वहाँ ब्लीचिंग पाउडर आता है 33% का, उसका प्रति एकड़ के घोल बना करके मृदा को उपचारित करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, जो हानिकारक कीट हैं उनमें ज्यादातर आजकल फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो रहा है, कहीं कहीं तना छेदक कीट का भी प्रकोप हो रहा है।
1: जी हाँ, इसके लिए जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन दो विधियां हैं। तो सर्वप्रथम हमको जैविक प्रबंधन करना चाहिए कि जब कीट दिखाई दे उसकी संख्या के हिसाब से हमको पहले जैविक प्रबंधन करना है। तो बुआई के 15 दिन बाद 1 एकड़ क्षेत्रफल में 3 ट्रैकोकार्ड रख दें और उसकी निगरानी करते रहें फसल की
0: यानी उसको काट करके जगह जगह लगा दें।
1: पत्तियों में, स्टेपल कर दें उसको।
0: ट्राइको कार्ड।
1: जी, अगर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आपको दिख रहा है, तो उसके लिए 5% ये नीम का तेल आता है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। 5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा है या टेलिनोमस रेमुस है, इसकी 50,000 से 10,000 की संख्या का जैविक कार्ड आता है, उसको पत्तियों में उसको लगा देना चाहिए।
0: प्रति एकड़
1: जी हाँ
0: ट्राइको कार्ड या टेलिनोमस रेमोस,
1: जी,
0: ये भी एक तरह का कार्ड होगा।
1: जैविक जैविक प्रबंधन के लिए।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक है जहां फॉल आर्मी वर्म का, वहां
1: वहां पर रसायन का संचित की जाती है, इसके लिए स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें।
0: यानी स्पाइन टोरम आधा ML दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें।
1: जी हाँ,
0: इसके अलावा
1: इसके अलावा लैम्डा साई हरलोथिन 9.5% की 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की पानी में घोल के छिड़काव करें, अथवा थाई मेथॉक्साम 12.5% की दवा का भी हम चयन कर सकते हैं।
0: और इसकी कॉम्बिनेशन में भी दवा आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: डॉक्टर साहब, जहां तना छेदक प्ररोह मक्खी या पत्ती लपेटक कीट की समस्या है वहां
1: इस अवस्था पे जैसे दीमक एक प्रमुख कीट है, जहाँ हल्की मृदा होती है, तो वहां पर दीमक का
0: बलुई
1: प्रकोप,
0: दोमट।
1: बलुई दोमट, तो उसके लिए बेवेरिया बेसियाना 2 से 3 किलोग्राम पाउडर को 100 से 200 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके इसको 1 एकड़ में छिड़काव कर दें। या अगर आपके खड़ी फसल में दिख रहा है और आपके पास जैविक उपचार नहीं संभव है, तो आप रसायन में जा सकते हैं। तो क्लोरपायरीफास दवा सिंचाई पानी के साथ में आप मिला सकते हैं इसको 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 700-7840421, 700-7840421, 700-7840421।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं?

0: मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: रियाज भैया।
5: हाँ सरला भैया।
4: मेहनत जब करा था सबसे जरूरी है मनोरंजन, है अपन जो शरीर है मन है वो आनंद से भर जाता है।
5: बिल्कुल, कहे से कि जब कोनो संगीत सुना जाते तो जो हम पंच काम करत रही थे वो और मन लागत है और अपन काम जो है और बढ़िया ढंग से हुआ चला जाता है।
4: तो काहे न भैया सुन लें जा यू खमटा गीत, शंकर यादव और साथी के स्वर में है तो सुना जाए।
6: अरे दिलवा के बतिया, अरे दिलवा के बतिया, मन ना भावे बलम पर।

0: सरला बहनी,
1: हाँ भैया,
0: देखो अपने एक कार्यक्रम में हम पंच कुछ ऐसे किसानन के बुलाई थे कि जोन अपनी खेती पाती में बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो काहे ना आज के किसान में जोन अपने किसान भाई आए हैं उनके बात सुन लीन जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के गौरा गांव के शुभम द्विवेदी भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप शिमला मिर्च की खेती, सीडलेस खीरा की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, इस तरह की खेती से जुड़ा हुआ कब से?
3: मेरी जो पढ़ाई है वो हम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, जिसमें हमने शुरू से ही कृषि बोर्ड और स्नातक परास्नातक में बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्री बिजनेस किया, जो कि शुरू से मेरा उद्देश्य था कि जो हमने शिक्षा ग्रहण की है अपने ही गांव में जाके इसी शिक्षा से रिलेटेड कुछ उद्योग किया जाए। शुरू से पहले मैंने पाली हाउस लगवाया जो कि मेरा आधे एकड़ का है, उसमें हम लाल रंगीन शिमला मिर्च की खेती करते हैं और खुले में 2 एकड़ में हरी शिमला मिर्च की खेती करते हैं और 1 एकड़ में सीडलेस खीरा जिसको बोलते हैं उसकी खेती करते हैं।
2: तो आपने कहा कि आधा एकड़ का पाली हाउस है, आपके पास नेट हाउस भी है?
3: नेट हाउस है जिसमें हम खीरे की खेती करते हैं 1 एकड़,
2: यानी सीडलेस खीरा।
3: सीडलेस खीरा।
2: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके पाली हाउस में है?
3: हमारे पास पाली हाउस में लाल पीली शिमला मिर्च की रोपाई का समय चल रहा है, जो कि हमने अगस्त में मैंने रोपाई की हुई है। अब ये पौध हमारी लगभग 60 दिन के बाद फूल और फल की वृद्धि में बदलेगा, फिर वही 90 दिन में हमारा रंगीन शिमला मिर्च का माल निकलना चालू होगा।
2: आपने क्या नर्सरी खुद तैयार की, जो कहीं से नर्सरी लेकर के रोपाई की?
3: नर्सरी हम खरीद मतलब लेके रोपाई करते हैं, उनको बीज देते हैं नर्सरी वाले जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर लगा होता है, तो वो बीज से करके हमको पौधा देते हैं तो हम रोपाई करते हैं।
2: तो कोई खास वैरायटी रंगीन शिमला मिर्च की है?
3: इसकी अलग वैरायटी आती है जिसमें पीले में जो है हमारा डब स्टेप नाम से आता है और लाल हमारा जो आता है वो हमारा बचाटा के नाम से आता है।
2: इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप?
3: इस वैरायटी में जो फल की आकृति है वो बहुत अच्छा बनता है, कलर अच्छा आता है और पैदावार बहुत अच्छी होती है इस वैरायटी में।
2: और जो खुले में 2 एकड़ आप हरी शिमला मिर्च करते हैं उसकी कौन सी वैरायटी चुनते हैं?
3: उसकी हरी शिमला मिर्च की वो अलग वैरायटी है जो कि अभी हमने जो लगाई हुई वो आशा वैरायटी है, इंदिरा वैरायटी है, ये हम लगाते हैं।
2: तो उसकी रोपाई कब तक करेंगे?
3: रोपाई उसके 15 सितंबर में करेंगे।
2: खड़ी फसल में कौन कौन सी देखभाल करते हैं, जहां पाली हाउस में है और जहां खुले में है, दोनों में?
3: पौधा रोपण करने के बाद मेन जो उसमें खेती में देखना होता है कि पौधे में कोई भी कीड़ा कोई भी कीट जो ना हो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हैं, पौधे में नमी उसके साथ में क्या क्या उसको खाद देनी है। जब छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको 15 दिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है पर पौधे में ही खाद पानी उस पर ही हम लोग मशीन से देते हैं,
2: यानी फर्टिगेशन,
3: फर्टिगेशन बोल सकते हैं उसको। और फिर जब पौधा में जड़ विकसित हो जाता है, तना विकसित हो जाता है, पौधा 20 से 25 दिन का मजबूत हो जाता है, तब उसको हम लोग ड्रिप के थ्रू तो उसमें फर्टिगेशन करते हैं।
2: और रोग दोख और कीड़ा से बचाव के लिए?
3: रोग दोख कीड़ा से बचाव के लिए समय समय पे स्प्रे कराना होता है, वो हम चाहे वो हमारा उसमें कीट का लगा हो या कोई फंगस लगा होता है उसको हमको प्रॉपर देख रेख करनी होती है सुबह शाम।
2: और जहाँ खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं तो वहाँ तो आपको विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है?
3: उसमें विशेष सावधानी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो खुले में है और खुले के तापमान में थोड़ा कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा

0: ध्यान देना होता है।
1: और अंतरण क्या रखते हैं उसका?
0: पौधे का पौधा जो दूरी होती है हरी शिमले की वो होती है 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पौधा का दूरी होती है
1: लाइन
0: जो
1: से
0: लाइन से
1: लाइन,
0: लाइन की जो दूरी होगी वो हमारी 1 फीट आती है 30 सेंटीमीटर।
1: और जो पाली हाउस में करते हैं उसका अंतरण?
0: उसमें जो दूरी होती है वो पौधे की पौधे दूरी 45 सेंटीमीटर होती है, और जो पौधे की जो लाइन से पौधे की दूरी होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है।
1: खड़ी फसल में जो खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं, तो फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा देते हैं, उर्वरक की मात्रा देते हैं?
0: 30 दिन के बाद जैसे फर्टिगेशन चालू करते हैं, ग्रेड के हिसाब से फल के हिसाब से हमको उसमें देनी पड़ती है।
1: तो ये काम तो आप पाली हाउस में करते हैं?
0: सेम पाली हाउस में और खुले हरी शिमला मिर्च में दोनों में ही करना होता है, क्योंकि पेड़ वही हैं, बस उसमें वैरायटी का अलग है, पैदावार उससे भी लेना है, पैदावार उससे भी लेना है। ड्रिप पे टपक विधि के थ्रू सिंचाई है, करने का तरीका वही है, सेम मशीन सेम खाद हम उसी से पूरा चलाते हैं, पाली हाउस नेट हाउस और ओपन में।
1: पहली फलत कब तक मिलने की संभावना है पाली हाउस में?
0: पाली हाउस में पहली फलत जो हमारी आती है, जैसे मैंने 10 अगस्त को इस सीजन का रोपाई किया है, तो हम यहाँ से 80 दिन का जोड़ के चलेंगे, तो हमारा वही 10-15 से 10 नवंबर, वही मिड नवंबर जिसको बोलते हैं मध्य नवंबर, उसी में हमारा माल निकलना चालू होगा।
1: उस समय आपको भाव अच्छा मिलेगा,
0: सहला चल रही होती है और भाव भी अच्छा रेट रहेगा उस टाइम।
1: और जो खुले में शिमला मिर्च है?
0: खुले की शिमला मिर्च की जो उसकी पैदावार की जो तौड़ाई है वो हमारी आती है 65 से 70 दिन की, उसकी थोड़ा सा 15 दिन पहले आती है,
1: यानी अक्टूबर के लास्ट में।
0: अक्टूबर के लास्ट में।
1: एकड़ पीछे आंकड़ा देखें, जो खुले में आप हरी शिमला मिर्च कर रहे हैं उसकी एकड़ में क्या लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है? साथ में जो आधा एकड़ की संरक्षित खेती है रंगीन शिमला मिर्च की, उसमें एक साल की लागत क्या गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: संरचित खेती का जो हमारा पूरा एक एवरेज रेट निकलता है, क्योंकि देखिए निकलता माल स्टार्ट होता है तो 70 रुपये से लेकर 200-300 भी जाता है, लेकिन साल का आता है हमारा 80 रुपये का एवरेज, और 10 टन लगभग मेरा माल पूरी कोशिश रहती है निकाल लें, जिससे
1: यानी सौ
0: हमारा
1: कुंतल
0: 100 कुंटल लगभग
1: पाली हाउस से
0: पाली हाउस से।
1: और खुले में?
0: खुले में हमारा वो निकल जाता है जितने निकलना चाहिए तो 50 टन, लेकिन हर साल अभी 2-3 साल से 35 से 40 टन निकलता है,
1: यानी 400
0: एक एकड़
1: कुंतल
0: 400 कुंटल
1: साल में।
0: साल में।
1: तो खर्चा?
0: खर्चा संरक्षित खेती का जो हमारा आता है वो उसको 6, क्योंकि वो फसल अगस्त से चल के मई तक चलती है, तो वो 8 से 9 महीने की फसल है, तो उसके सारे खर्चे हमारे जो आते हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपए आते हैं, और जो कि हमने बताया 10 टन 80 रुपए का एक एवरेज पकड़ते हैं, तो हमारा बड़े आराम से 8.5 से 9 टन का माल निकल जाता है, जिससे 3.5 लाख रुपए हम लागत भी हटा देते हैं, तो पाली हाउस से बड़े आराम से बचत बचत हमारा 5-5.5 लाख का हो जाता है।
1: और खुले में जो शिमला मिर्च
0: खुले
1: है?
0: का जो एकड़ का है वो कम से कम शुरुआत के समय में, और आखिरी वो भी लंबी फसल है क्योंकि सितंबर से लग के मई तक चलती है, 8 से 9 महीने की 7 महीने की फसल है, तो उसमें भी एकड़ का 2 लाख का खर्चा आता है, और उसकी जो एवरेज रेट होती है वो कम होती है, एवरेज रेट 20 का हम लेके चलते हैं, और हम 40 टन भी निकालते हैं, और 2.5 से 3 लाख खर्चा उसमें भी आता है, तो बड़े आराम से एकड़ पे 4 लाख बच जाता है।
1: यानी 4 दूनी 8 लाख 2 एकड़ में आपको बच जाता
0: जी
1: है,
0: जी
1: और 5-6 लाख रुपया संरक्षित खेती
0: संरक्षित खेती
1: से,
0: से। जी,
1: तो आप संतुष्ट हैं?
0: हाँ मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहिए?
0: किसान भाइयों बहनों को ये सलाह है कि आज के टाइम जो संरचित खेती में जो आधुनिकता आ रही है उसको अपनाएं, खेती हमेशा ड्रिप और मल्चिंग के थ्रू किया जाए, जो बहुत से किसान आज भी अनभिज्ञ हैं वो बेडों पे पानी सीधा जो भर के करते हैं, उसमें पैदावार भी कम मिलती है, फसल भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिसलिए उनकी आय और उनका पैसा निकल नहीं पाता है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 80-90-88-72-82, 8090-88-7282।
1: शुभम द्विवेदी भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा।

0: किसान अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: सरला बहनी, देखो अपन जो खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहता है, और अगर हम पंच का मौसम की जानकारी रहता है तो उसके प्रबंधन जो है हम पंच निकेतन से कर लिए थे।
3: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार आज यानी 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ही बरसात हो संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हर जगह लगभग बरसात हो संभावना है, और कहूँ कहूँ भैया भारी से भारी बरसात हो संभावना है।
2: अपन कार्यक्रम किस लागत है इके बारे में चिट्ठी पाती के माध्यम से अवगत जरूर करावे, तो उके लिए पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। इसके अलावा अपने पंच ईमेल के माध्यम से भी चिट्ठी पाती भेज सकते हैं, तो उके लिए पता है फार्म एंड होम farmandhomeairlko@gmail.com। यही के साथ माँ घड़ी इशारा कर रही है कि अपने बैठकी के समय हो रहा है समाप्त, तो पंचन चलिन जाए आज्ञा। जय हिंद, हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रूपये और सहायिकाओं का 6,000 रूपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5 लाख रूपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम

0: कार्यक्रम में हुई शामिल, कहा बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये और सहायिकाओं का 4,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और उनके परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रूपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो चुके हैं और इनमें काम करने वाली महिलाएं सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बचपन अगर सुरक्षित रहेगा तो स्वस्थ और समर्थ भारत के संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेंगे।
1: बचपन अगर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यही स्वस्थ बचपन एक समर्थ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पूरा करेगा और स्वस्थ और समर्थ भारत ही प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करेगा, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। उसका आधार कोई बनने वाला है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बनने वाले हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्रोद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि यूपी टेक्सटाइल 2026 प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास विरासत है, हुनर है, मानव संसाधन है और दुनिया का सबसे यंग वर्कफोर्स भी हमारे पास मौजूद है। इसी ताकत के सहारे उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है। श्री योगी ने कहा कि विगत 9 वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट से जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखी है।
1: कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो वह ये वस्त्र उद्योग का सेक्टर है। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है।
0: इस दौरान उन्होंने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में 5,196 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन किए गए। इसके साथ ही 163 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अभियान की शुरुआत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन, दीप प्रज्वलन, लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वीडियो प्रदर्शन तथा केंद्रीय मंत्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। यह अभियान पूरे सितम्बर माह में देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक भागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी से मनीष सिंह के साथ समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम विचार से अवसर तक, नवाचार से निवेश तक और प्रतिभा से उपलब्धि तक की यात्रा को गति देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज का भारत बदल रहा है और स्टार्टअप आज के समय की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि इनोवेशन को केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी इनोवेशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके साथ ही 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आज इस संबंध में पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रदेश भर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जौनपुर, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर देहात में जिला जज रविन्द्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील की।
1: लोक अदालत में ऐसे वाद जैसे वैवाहिक वाद होते हैं, बैंक वसूली ऋण वाले मुकदमे होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल और किसी भी तरीके के सिविल वाद या शमनीय वाद जो होते हैं, जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं, उसके लिए बिना किसी अधिवक्ता शुल्क, बिना न्याय शुल्क के जनता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय आ सकती है।
0: राजधानी लखनऊ सहित आज प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश में 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक 6,83,000 से अधिक लंच पैकेट और 1,11,000 से ज्यादा बाढ़ राहत किट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं 19,496 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बदायूं और बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: कल रात को भी कुछ कटान हुआ है, टोटल 38 जो घर हैं गांव में कटे हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ लोगों को यहां से बाढ़ डालने में मोबिलाइज किया गया है और जो दूसरे मजरे में हैं उनको राहत किट का वितरण किया गया है और मेडिकल कैंप भी लगवाया गया है वहां पर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये
4: मेरी गुड़िया की
3: नाम। दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी होगी।

0: बोलो क्या
1: आरबीआई कहता है।
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: एक 102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम लेके आए हैं फिल्म जुर्म से, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा

0: महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म खाकी में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था राम संपत ने। आइए अब सुनते हैं अनवर और साधना सरगम को फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध में। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: यारा दिलदारा, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार जतिन ललित।

फिल्म यारा दिलदारा के इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली गजल है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म कांटे का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

श्रेया घोषाल को भी आपने सुना फिल्म गर्लफ्रेंड में। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में आप सुने थे गजल। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है।

0: एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
0: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
0: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
0: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीन दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
6: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
7: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।

याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरी अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544-5297-100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।

आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दो बदन में। गीत शकील बदायूनी का था और संगीत रवि का। आइए अब सुनते हैं फिल्म दो रास्ते का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

शान और महालक्ष्मी को भी आपने सुना फिल्म रिश्ते में। गीत को लिखा था बास कटकाने और संगीत दिया था संजीव दर्शन ने। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म फाइट क्लब से, जिसे लिखा है निलेश मिश्रा ने, संगीत तैयार किया है प्रीतम ने। आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

पुलिस पब्लिक। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। गीत असद भोपाली का था और संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म घर का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार आरडी परमन।

इस गीत के साथ ही आपकी बात कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में हम बात करेंगे क्याकिंग और कैनोइंग की उभरती हुई खिलाड़ी आंचल और भूमि सोनकर से, और हम सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो उभरती हुई खिलाड़ी क्याकिंग और कैनोइंग में, जिन्होंने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और भविष्य में इनकी योजना है कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की। तो आइए स्वागत करते हैं आंचल और भूमि का। आंचल, भूमि, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: आंचल, आप बताइए, आपको क्याकिंग और कैनोइंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इस खेल में जाने की?
1: सर, अभी हम बचपन से स्विमिंग करते थे, तो हमारा लॉकडाउन हुआ था तो इसकी वजह से स्विमिंग हमारा बंद हो गया था, तो फिर से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम स्विमिंग की, तो
0: यूनिवर्सिटी गेम्स की।
1: हाँ, तो फिर सर उसके बाद जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे देखा तो कुछ नाव चल रही थी, क्योंकि वो पहली बार देखा था, ऐसा कभी गेम सुना भी नहीं और पहली बार देखा था। तो फिर वो गेम देख के लगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्विमिंग पूरे 12 महीने नहीं कर सकते, ठंड आ जाती है। फिर हाँ हुआ कि ये गेम करना है, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर गए, बगल में ही था जस्ट बोट क्लब प्रयागराज है कीड़गंज के पास, तो वहाँ पर गए हम। वहाँ कोच थे धवन सर, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे से आना, तो फिर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया।
0: वहाँ से आपकी शुरुआत हुई?
1: जी सर।
0: तो जैसा कि आंचल ने बताया कि शुरुआत आप लोगों ने स्विमिंग से की थी, तो स्विमिंग कहाँ आप करती थी? भूमि, स्विमिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या शौक से करती थी या सीखने के लिए करती थी, तो कौन लेके गया आपको स्विमिंग के लिए?
2: मेरे फादर का नाम मिस्टर राजा बाबू सोनकर है, वो हमें शुरू से ही मतलब गेम में डालना चाहते थे, क्योंकि गेम में जितना हम लोग जाएंगे उतना ही खुल के रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को पहले टैकांडो सिखाया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। हम जब 5 साल के थे और ये 7 साल की थी, तब हमने टैकांडो किया था, तो फिर येलो बेल्ट करके हमने छोड़ दिया था। फिर 1 साल तक घर पे बैठे थे, कोई गेम नहीं, बस पढ़ाई।

0: कयाकिंग कैनोइंग ज्वाइन किया।
1: अच्छा रघुमि, आप दोनों सगी बहने हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? क्या कोई परिवार में पहले से स्पोर्ट्स में था, या फिर आप लोग ही पहले शख्स हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं?
0: सर अभी तक मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और जहाँ से सर हम बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे बस्ती है।
1: आपके पिताजी क्या करते हैं?
0: हमारे पापा अभी चाय की दुकान है।
1: आपके पिताजी की चाय की दुकान है, वो अशिक्षित हैं, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, ये प्लान किया और ये प्रेरणा दी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, पढ़ाया लिखाया भी लेकिन खेलकूद में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपको स्विमिंग के लिए ले गए गंगा जी में, जहां पे आपको किसी ने सिखाया और आपने उस समय शौक के लिए ही स्विमिंग सीखनी शुरू की, और कोविड के बाद आप लोग कयाकिंग और कैनोइंग में आए। तो वहां पे आपके कोच कौन थे, कैसे आप लोगों ने सीखना शुरू किया, और शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई आप लोगों को?
0: पहले तो हम स्विमिंग में स्कूल स्टेट खेले थे तो इतना कुछ जानते नहीं थे। कयाकिंग कैनोइंग में जब आए तो हर चीज एकदम नया था, मतलब वो ऐसा गेम था कि आज तक न देखा था और न ही तो सुना था। पहली बार देखा भी था, पहली बार सुना भी था, बस वो भी लग रहा था कि ऐसे शौक से होगा, ठंडी में छुट्टी होगी, लेकिन ये गेम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ असल में अब हम गेम में आए हैं। वो तो स्कूल स्टेट था इसलिए उतना कुछ लगा नहीं, फिर इधर जब आए तब गेम का अहमियत पता चली कि गेम क्या होता है। एक खिलाड़ी हम अगर बने तो कयाकिंग कैनोइंग से बने, एक एथलीट हम अपने गेम से ही बने, बस स्विमिंग एक जरिया था हम लोगों को इस गेम तक पहुंचाने के लिए।
1: स्विमिंग माध्यम था जो आपको लेके गया कयाकिंग और कैनोइंग में। तो आचल ये बताइए कि जब आप लोगों ने कयाकिंग और कैनोइंग शुरू की तो उसमें K1 होता है जिसमें एक ही प्लेयर पैडल करता है, और K2 होता है जिसमें दो होते हैं, तो आप लोग क्या शुरुआत में ही साथ में ही किया करते थे, K2 ही किया करते थे, कि शुरुआत में K1 और उसके बाद में फिर आपने टीम बनाई दो लोग मिलके K2?
2: नहीं सर, हम जब ये गेम ज्वाइन किए थे तो इसमें बोट में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
1: तो वो अकेले करते थे?
2: हाँ, तो कोई भी बच्चा होगा वो उस गेम में जो भी जाएगा तो उसमें उसको अकेले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उसकी बोट बैलेंस हो जाएगी, बोट चलने लगेगी, तब वो डबल और फोर पे बैठ के पैडल चलाता है।
1: तो आप लोग K1 में भी करती हैं, K2 में भी करती हैं, तो पहली ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें जाके आप लोगों ने कोई मेडल जीता हो या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को लगा हो कि नहीं हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं?
0: हम लोग ने अगस्त 2022 में गेम ज्वाइन किया था, तो और फिर नया नया गेम था, उस समय एक खिलाड़ी की तरह शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं थी, तो बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर दिसंबर 2022 में हमने अपना पहला नेशनल खेला था जो कि भोपाल में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हम 5 लड़कियां थी, तो मैं अकेले गई थी, K1 से खेला था हमने और इन्होंने K4 से खेला था। उस समय खेलो इंडिया हुआ था तो हम गए थे K1 से खेलने, मेरी 200 मीटर की रेस थी तो उसमें पलट गए थे। तो पलटने के बाद उसमें काफी लोगों ने ऐसा कमेंट पास किया, तो फिर वो चीजें बहुत ज्यादा हो गया कि हम उस समय मेरी बोट इन चारों से थोड़ी सी सही चल रही थी लेकिन फिर भी हम पलट गए थे, तो उस चीज को लगा कि ये चीज गलत है तो अब गेम पे ध्यान देंगे।
1: वहां से आपको जो सीखने को मिला, सबक मिला, उसके बाद आपने मेहनत और ज्यादा करनी शुरू की और इसको ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो आचल आपको कब लगा कि भूमि तो अच्छा कर रही है, भूमि तो अब ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से ले रही है, तो क्या आपने भी तभी से गंभीरता से लिया या आपने उस समय शौक से ही लिया?
2: सर उस टाइम तो हमारी वो जब खेलो इंडिया हुआ था तो उस टाइम हमारा बैलेंस था, हम ढंग से पैडल भी नहीं मार पाते थे, तो फिर उसके बाद खेलो इंडिया खेल के आए, यूपी को फाइनल में पहुंचाया था, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट किया फाइनल में यूपी को, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, उसमें फिर गोल्ड आने चालू हुए। मेरा बैलेंस बहुत लेट से बना था बोर्ड पर, उसमें सबसे मुश्किल वर्क होता है बैलेंस बनाना,
1: बैलेंस बनाना। जैसा कि भूमि ने बताया कि वो उस प्रतियोगिता में अच्छा तो खेल नहीं थी लेकिन अचानक से उनकी बोट पलट गई, यानी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया। तो आप लोग बहने जब साथ में करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ K2 में, जब K2 में आप लोग साथ में पेडल करती हैं, तो क्या आपस में थोड़ा सा लड़ाई होती है कि तुम ठीक से नहीं चला रही हो, तुम ठीक से नहीं चला रही हो?
0: हाँ सर, होती है बहुत हद तक। सर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि जो अपना K2 पार्टनर होता है या भी कोई भी अगर अपना पार्टनर होता है तो हम लोगों का माइंडसेट एक होना चाहिए, एकदम एक, कि अगर एक आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वालों को बिना बताए पता चल जाए, इतना ज्यादा माइंडसेट एक होना चाहिए। तो एक बार की तो ये चीज हुई नहीं सर, फिर हम K1 करते थे सर, K2 बस हमने ऐसे चलाना शुरू किया लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम साथ में K2 चलाएंगे, बस ऐसे उतारा एक दिन K2, वो सही चलने लगी, सही चलते चलते कॉम्पिटिशन करते करते एक एक्सपीरियंस मिलने लगा और सर हमारा 3 साल के बाद मेडल पड़ना शुरू हुआ था।
1: पहला मेडल कब मिला आपको?
2: दिसंबर 2025 में
1: नेशनल
2: में आया था, खेलो इंडिया में।
1: खेलो इंडिया

0: में उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला
1: 200
0: मीटर में।
1: जी सर।
0: तो जैसा कि आपने बताया केटू में सबसे जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बना के रखना, क्योंकि घर में भी आप लोग साथ रहते हैं तो घर में भी एक समन्वय बना के रखना पड़ता है और खेल में भी आप लोग साथ हैं, तो इससे आपको एक सहयोग मिल जाता होगा, एक एडवांटेज मिल जाता होगा साथ में खेलने का, क्योंकि कोई और खिलाड़ी बाहर से आता, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता, तो आप समन्वय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आप लोग साथ रहती हैं। अब मैं भूमि आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कायाकिंग और कैनोइंग ये इस खेल के बारे में लोग कम जानते हैं और इस खेल में जो प्रशिक्षण के अवसर भी हैं प्रयागराज में कम है, बहुत कम खिलाड़ी होंगे, गिनती के खिलाड़ी होंगे जो आप लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो यहाँ कहाँ पे सीखती हैं, आपके कोच कौन है और कितनी सुविधाएं हैं, कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पे?
1: यहाँ पे हमारा बोट क्लब है प्रयागराज जो ये
0: चखंडी
1: पे अपना सर, वहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया था, हमारे बोट में क्या होती है जो यहाँ पे बोटे हैं वो कार्गो है,
0: कार्गो,
1: और जिससे हमारा कॉम्पिटिशन होता है वो नैलो है। और सर हमारा गेम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, हमारी केवल पैडल ही 50 से 60 हजार की आती है और बोट तो और ही ज्यादा आती है, नैलो अपनी आती है लैक्स 2 लैक्स में, तो सर अपने पास नहीं है वो। सर हम 3 साल से यहाँ पे इसीलिए पीछे थे क्योंकि सर अपन यहाँ पे कार्गो चलाते थे और वहां जाके नैलो एक बार की इतनी अच्छी नहीं चलती जितना अपना कार्गो चल जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते थे। और सर यहाँ पे पैडल भी है लेकिन कम है, बच्चे अगर 50 है तो पैडल 10 है, तो सर अपने पास फैसिलिटीज भी कम थी, बस बच्चे मेहनत करते थे, मेहनत से भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते थे क्योंकि अपने गेम में डाइट भी बहुत ज्यादा रहता था, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे घर पे रह के गेम करते हैं सर वो उतना अच्छा डाइट तो ले सकते हैं सर, लेकिन जहां तक रिकवरी नहीं ले सकते सर, इसलिए गेम में थोड़ा सा अपने को रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सर फैसिलिटीज भी चाहिए।
0: तो आप लोगों को अभी डाइट रिकवरी या फिर जो प्रशिक्षण है वो कहाँ आप कर रही अभी फिलहाल?
1: सर अभी तो हम भोपाल में कर रहे हैं, हमको 1 साल हो गया और सर भोपाल में ये हमारे कैकिंग कैनोइंग का एक तरीके से हब है।
0: अच्छा।
1: वहाँ के ऑल इंडिया के प्लेयर जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते अच्छा, वो हमारे क्लब पे आते हैं, मतलब भोपाल पे आके प्रैक्टिस करते हैं।
0: तो अभी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। और जैसे आपने बताया कि यहाँ पैडल्स कम थे, आपको कार्गो बोट्स मिलती थी, वहाँ पे अलग बोट्स होती थी,
1: नैलो बोट्स,
0: तो वहाँ पे वो बोट्स मिल रही हैं।
1: हाँ जी सर।
0: वहाँ पे आपको कोचेस भी अच्छे मिल रहे होंगे। हाँ। सारी सुविधाएं मिल रही है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होंगे।
1: वहाँ पे एक खुद का एसोसिएशन है।
0: अच्छा, ये एसोसिएशन है, तो आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन की होंगी तो वो आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो आचल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप पहली बार भोपाल में गई होंगी, आप लोग यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और ज्यादा मेडल्स अचीव कर सकती हूँ?
2: सर एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चीज होना चाहिए एनवायरमेंट, क्योंकि हम जहाँ पे अभी प्रयागराज में गेम करते हैं सर केवल हम ही बच्चे हैं, सर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो 50, लेकिन जहाँ सर हम भोपाल में आज प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सर कम से कम 500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कुछ जॉब वाली टीम है जैसे कि सर्विसेस है, SSB है, CRPF है, BSF है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं और भोपाल में इंटरनेशनल कोचेस भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं।
0: वहाँ आपको सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं और कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलेंगे तो आपके खेल में और निखार आएगा। खेल से अलग हम बात करते हैं, अब आचल पढ़ाई में आपका क्या है, अभी आपको कौन सा विषय पसंद है, अभी आप क्या कर रहे हैं?
2: सर अभी तो हम BA कर रहे हैं, अभी हमारा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है इसलिए सर, लेकिन आगे हमें BPED करना है।
0: BPED करना है, और पढ़ाई में कौन सा विषय ऐसा है जो आपको ज्यादा पसंद है?
2: हिंदी
0: साहित्य।
2: जी सर।
0: तो भूमि, आप दोनों लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं कायाकिंग और कैनोइंग के, आप लोग इसी में अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसके अलावा आप पढ़ाई में आप लोगों कितना समय दे पाती हैं? और ऐसा तो नहीं होता कि आप जब प्रशिक्षण लेके आती तो आप लोग बहुत थक जाते होंगे, तो पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पाते होंगे, तो पढ़ाई के साथ कितना जस्टिस कर पाते हैं आप लोग?
1: सर हम सुबह उठते हैं 5 बजे, वर्कआउट जाते हैं, फिर रूम पर आते आते 10 बज जाते हैं, फिर सर ब्रेकफास्ट बना के अपना करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर सर 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो फिर सर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, फिर रात को आते हैं 7 बजे 8 बजे तक।
0: जब वापस आते हैं तो बहुत थके होते होंगे?
1: बहुत ज्यादा सर, क्योंकि वर्कआउट कंटिन्यू चलता रहता है।
0: इसके बावजूद भी पढ़ाई के लिए आप लोग समय निकाल लेते हैं?
1: हाँ सर।
0: पढ़ाई जो भी करते हैं मन से करते हैं। तो आगे आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, नियर फ्यूचर में कौन से कॉम्पिटिशन है जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं?
1: सर अभी तो हमारा नेशनल गेम है, 2 से 3 महीने में हमारा नेशनल गेम आने वाला है सर, उस बार हम 1 सेकंड से चूक गए थे, तो इस बार नहीं सर, नेशनल

0: गेम क्वालिफाई
1: करने
0: करने
1: से।
0: से।
1: अच्छा
0: तो सर वो चीज़ें इस बार रिपीट नहीं करना है, इस बार नेशनल गेम में जाना और मेडल भी लेना है उसमें सर। बाकी अपने आगे का तो इंटरनेशनल है, अपनी केटू को और बेस्ट करना है और इंटरनेशनल खेलना है।
1: तो अभी जैसे आप लोग ने कई कंपटीशन में, जैसे मैं देख रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 उदयपुर में, 200 मीटर्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप फरवरी 2026 ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 सांगली महाराष्ट्र में जो हुआ था उसमें 3 सिल्वर K4 में आपने जीता, और इसके अलावा अस्मिता जोनल नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर K2 में और K4 में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था आपने जीता था, और अस्मिता नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में 2 ब्रॉन्ज मेडल आपने K2 में जीता था। तो इन सब प्रतियोगिताओं में कौन सी ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आपको लगा कि इसमें ज्यादा मुश्किल हुई, ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा जीतने के लिए, सबसे मुश्किल जो लगा हो?
0: सर हमारा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप था सर, इसमें हमारा दो इवेंट था, एक 5 किलोमीटर का और एक 200 मीटर का। 5 किलोमीटर में सर हमारी एक दिन पहले थी, तो सर उसमें हमारे साथ BSF की टीम थी, MP की टीम थी, सर्विसेज की टीम थी। तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए गए सर, हम मेडल पे ही चल रहे थे, सेकंड थर्ड पे चल रहे थे। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट पे चल रहे थे, फिर सर हम सेकंड पे हो गए थे। 2 किलोमीटर की रेस होने वाली थी, तब तक सर हम कैप्साइज हो गए। तो सर उस दिन तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था कि अब आज कुछ नहीं हुआ तो कल भी कुछ नहीं होगा। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या करना है,
1: आप
0: इतनी
1: लोग
0: मेहनत
1: मेडल की
0: करी,
1: रेस में थी, अचानक से ही आपकी बोट कैप्साइज हो गई।
0: कैप्साइज हो गई। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम क्या होगा, सब चीज हिम्मत टूट गई थी कि जब हमारा मेन इवेंट था, हमने इतनी मेहनत करी, उसमें नहीं हुआ, 200 मीटर में क्या ही होगा। लेकिन सर रात तक तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, उस चीज से निकल नहीं पा रहे थे। फिर उस समय फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला सर, और हमारे सर का भी, क्योंकि सर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था कि हम अगली रेस के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, लग रहा था कुछ नहीं होगा। फिर घर वालों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था, घर वालों का भी बार बार फोन आ रहा था, सर भी बार बार फोन कर रहे हैं कि ठीक है जो हुआ आज ठीक है, कल का ध्यान दो, अगर आज का दिन तुम्हारा नहीं है तो क्या पता कल का दिन तुम्हारा हो। सर फिर अगले दिन हमारी पहली ही रेस थी 2 बजे, फिर सर हम उसमें उतरे थे, उसमें उड़ीसा की टीम थी, MP थी और SSB थी, इंडिया पुलिस थी, बहुत सारी टीम थी। तो सर हमारा उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था
1: 200 मीटर में K2 में
0: 200
1: आपने जीता
0: मीटर
1: था
0: में।
1: उसमें,
0: हाँ जी
1: चलिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एक बार गिरने के बाद फिर उठ के चल लेना, फिर उसमें मेडल लाना, वो बड़ी चीज है, क्योंकि आपकी बोट कैप्साइज होना आप लोगों के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली घटना थी,
0: बहुत ज्यादा सर,
1: क्योंकि जो दबाव था तो उससे निकल के आप लोग अगले दिन बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि आपने मेडल जीता। तो आंचल और भूमि, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा आपके पिताजी से मिली, पिताजी ने आपको सबसे पहले स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एडमिशन कराया, आप लोग सीखने लगे गंगा जी के तट पे, वहां पे तैराकी में, उसके बाद आप लोग कैकिंग और कैनोइंग में थे, तो और कहां से आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिला इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कहां से प्रेरणा मिली?
0: सर हमारे पिताजी के बाद तो हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने ही हमारा सब चीज़ किया। क्योंकि सर अभी मैंने बताया कि हमारा गेम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और सर हम इतने कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, तो अभिषेक सर ने ही पूरा पूरा साथ दिया था। और सर पेरेंट्स ने तो बस एक परमिशन दी है, बाकी पूरा गेम का हर चीज़ अभिषेक सर देख रहे हैं।
1: अभिषेक जी से मुलाकात आप लोग कैसे हुई, कहाँ उन्होंने देखा आपको खेलते हुए?
0: सर उन्हें खेलते हुए नहीं देखा था सर, वो स्कूल में हमारे आए थे हम लोगों को कुछ बताने के लिए, फिर उनसे हम लोग कनेक्ट हुए कंप्यूटर क्लास के थ्रू। तो कंप्यूटर क्लास करते करते सर को हमने एक दिन ये सारी चीज़ें बताई कि हम स्विमिंग करते थे पहले, सर ने सुना, फिर पूरी बात जानी, हमारे सर्टिफिकेट देखे, मेडल देखे, फिर सर ने बोला कि ठीक है बच्चे गेम करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही दिन तक हमारे बारे में कोई गेम सोचा, बहुत से लोगों से राय ली कि बच्चों के लिए इंडिविजुअली कौन सा गेम अच्छा होगा, क्योंकि टीम में अगर सब अच्छे हैं तभी, लेकिन इंडिविजुअली खुद के ऊपर होता है। तो सर ने बहुत दिन तक सोचा, फिर हमने भी ये गेम देखा, समझा, सर को बताया, तो सर को ये गेम सही लगा, फिर हमने ये गेम ज्वाइन किया।
1: अभिषेक सर ने ही आप लोगों को खेल को चुनने के लिए प्रेरित किया और सहयोग कर रहे हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जैसा कि आपने बताया जब आपकी बोट कैप्साइज हो गई थी तो शाम को भी उन्होंने फोन करके बोला था कि कोई बात नहीं अगले दिन फिर से आप प्रयास कर सकते हैं, अगला दिन आपका होगा।
0: जिस दिन हम कैप्साइज हुए थे सर उसी समय वहां पे मौजूद थे।
1: अच्छा अभिषेक जी साथ में थे आपके,
0: हाँ फिर उनकी उसी दिन ट्रेन थी, अगले इवेंट में वो हमारे साथ नहीं थे, तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर रहे कि तुम लोग घबराना मत, कल के लिए प्रिपेयर रहो, कल के लिए प्रिपेयर रहो, डाउन मत हो, तुम लोग कर लोगे, आज खराब गया कल अच्छा होगा, तुम लोग कर लोगे कर लोगे। फिर हम लोग ने अगले दिन किया।
1: आंचल और भूमि आप लोगों ने इस खेल में अभी तक काफी कुछ अचीव किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं आपकी जो हमने अभी तक चर्चा की।

0: लेकिन आगे भी आपको बढ़ना है, आपको न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन इस खेल में प्रयागराज से ही और कई छोटे शहरों से कई नए खिलाड़ी भी आ रहे होंगे, कई नए खिलाड़ी हैं जो आपको सुन रहे हैं, चाहते होंगे कि आपकी तरह वो भी इस खेल में आगे बढ़े, तो उनके लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: सर, बस एक तो यही मैसेज जाएगा कि एक लड़की के लिए गेम करना बहुत टफ होता है, बट उसको करना चाहिए। जैसे कि वो घर में रह के लड़ती है अपने आप से, उसको बाहर दुनिया से लड़ना चाहिए ताकि वो एक अच्छी नारी बन सके। और आज तो लड़कियां चांद पे पहुंच रही हैं, प्लेन चला रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, तो फिर हम तो अभी एक एथलीट है, तो हम देश का मान बढ़ा सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आंचल आपने, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में, खासकर क्योकिंग और कैनोइंग जैसे खेल में, जैसा कि आपने बताया भी कि काफी महंगे खेल हैं, इसमें इस पृष्ठभूमि के लोग कमतर, जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके लिए अवसर कम उपलब्ध हैं, और खासकर लड़कियां जिनको माना जाता है कि वो अभी काफी पीछे हैं इस क्षेत्र में, वो आगे बढ़े, वो आप लोग देख के प्रेरित हों और अपना नाम रोशन करें, तो अभाव का बहाना नहीं रह जाता। तो भूमि, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: सबका अपना अलग अलग पैशन होता है। हमारा गेम है, किसी का कुछ और होगा, किसी का डांस होगा, किसी का सिंगिंग होगा, किसी का कुकिंग होगा, कुछ भी। हर चीज स्किल बेस्ट होती है अपनी अपनी जगह। बस एक ही चीज है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप किसी भी फील्ड में रहो, कोई भी चीज करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन बस मेहनत करो, क्योंकि फील्ड चुनने से ही कुछ नहीं होता, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कि जब तक मेहनत नहीं रहेगी तो फिर वो स्किल भी किसी काम की नहीं रहेगी,
0: मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और रास्ता अपने
2: अपने
0: आप
2: आप निकलता
0: बनता
2: है।
0: चले जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आंचल और भूमि, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के आप लोग यहाँ तक पहुंची हैं, हम यही चाहते हैं कि आप न सिर्फ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाएं। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में खेले गए क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश पर 3-0 से जीत हासिल कर 20 वर्षों में पहली बार AFC अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में डेनई मेतेई लैशाम ने पहला गोल, विशाल यादव ने दूसरा गोल तथा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मोहम्मद अरबाश ने तीसरा गोल किया। AFC अंडर 20 एशियन कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-23 और 21-27 से हराकर चाइना मास्टर्स में भारत का पहला खिताब हासिल किया। दुबई में खेले जा रहे महिला T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से युवा स्पिनर श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.4 ओवर में निर्धारित लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शूटिंग स्पर्धा में भारतीय टीम जापान में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशियाई खेलों 2026 से पहले भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही है। इस दल में मनु भाकर, ईशा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे शीर्ष निशानेबाज शामिल हैं। मेघालय में 2026 की हाफ मैराथन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। 5वीं सोहरा इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन मेघालय राज्य ओलंपिक संघ द्वारा किया गया। पिकलबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक वियतनाम के दा नांग में हुआ। ICC ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के नए मेजबान के रूप में भारत को मंजूरी दे दी है। 6 टीमों का यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा।

0: महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के उनके 20 साल के करियर का अंत हो गया। उनके करियर में एक विश्व कप जीत, 2 कोपा अमेरिका खिताब और बेसिकली रिकॉर्ड 207 मैच खेलना शामिल है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने इस फैसले की जानकारी दी। मेसी ने कहा, यह फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में राष्ट्रीय टीम और अर्जेंटीना के समर्थकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य दक्षिण अफ्रीकी संघ के नेताओं के साथ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 6ठे नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में आयोजित एशिया कप के पूल मैच में दक्षिण कोरिया को 7-3 के अंतर से हराया। क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। ईस्ट जोन की ओर से कप्तान ईशान किशन ने 270 रन तथा कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए। यूएस ओपन में एलेना रायबाकिना ने पूर्व यूएस ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-1 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। टेनिस में भारत के करण सिंह ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित पुरुष विश्व टूर M15 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह करण का चौथा और उनका 2026 सीजन का तीसरा खिताब है। हरियाणा के करनाल में रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में न्यूजीलैंड के 5वें वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसाक ब्रेकऑफ को 7-5 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज, जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है, शीतल देवी ने आज तीसरे चरण के तीसरे दिन महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए सेमीफाइनल में जम्मू की तीरंदाज ने सरिता को 145 143 से हराकर स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला कजाकिस्तान की आईजादा सिदान से होगा। सरिता के पास कांस्य पदक के मैच में चीन की वांग हुईटिंग से भिड़ने पर भारत के पदक तालिका में पदक जोड़ने का एक और अवसर होगा। इस प्रकार महिला के कंपाउंड इवेंट में भारत को एक पक्का पदक मिल गया और एक अन्य पदक अभी भी दौड़ में है, जिसने विश्व नंबर 1 शीतल शीर्ष स्थान पर नजर रखे हुए। आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, प्रस्तुति हमारे प्रयागराज केंद्र की थी।

ईमानदार। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत प्रकाश मेहरा का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म नसीहत से साधना सरगम की आवाज में। गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ये वादा रहा। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलचन बावरा ने और संगीत दिया है आरडी परमन ने।

सिंग इज किंग। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। गीत को लिखा था मयूरपुरी ने, संगीत दिया था प्रीतम ने, आवाजें थी राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की। आइए अब सुनते हैं फिल्म वजीर का ये गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा है विदो विनोद चोपड़ा ने और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ

0: दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर से हाजिर हों।

एफएम 102.7 आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर से हाजिर हों।